शुभ प्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58:29 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रातिकालीन सभा आरंभ होती है। एफएम शिमला पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रेले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावित

जारी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio will undertake a four-day visit to India beginning May 23rd. This will be his first visit to India. U.S. State Department has announced the visit that will take Rubio to Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. State Department spokesman Tommy Pigott said Secretary Rubio will discuss energy, security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. U.S. Embassy in New Delhi said that India will host a meeting of the Quad group, which includes Australia, Japan and United States, and Secretary Rubio will attend the meeting. India is set to host a meeting of Quad foreign ministers next week that is expected to deliberate on pressing global challenges, including the fallout of the West Asia crisis. New Delhi meeting is planned for May 26th and it is scheduled to be attended by Rubio, Australian Foreign Minister Penny Wong and Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu, with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar presiding over it. Directorate General of Civil Aviation has directed the inspection of the fuel control switches of an Air India Boeing 7878 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 7878 aircraft VTANX was grounded on 2nd February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. In IPL cricket, riding on a brilliant knock of 93 runs by Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night. Today, Kolkata Knight Riders will clash with Mumbai Indians at Eden Gardens, Kolkata. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। आइए आप और हम मिलकर आज के इस शुभ और मंगल दिवस की शुरुआत करते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांजलि के साथ। सबसे पहले आराधना करते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता, सबका मंगल करने वाले, विघ्नों को हरने वाले श्री गणेश जी के।

भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो पानी अमृत बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और वही भक्ति जब इंसान के मन में प्रवेश करती है तो इंसान भक्त बन जाता है।

श्रोताओं, सुबह की ये पावन बेला हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ भगवान का नाम है। जब मन भक्ति में जुड़ जाता है तब हर चिंता छोटी और हर खुशी बड़ी लगने लगती है। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत से सारा बोर कार्यक्रम हिमांजलि का। सुनते रहिए।

आप सभी श्रोताओं का दिन सुखमय हो, मंगलमय हो, प्रभु कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांचलि में आज बस इतना है। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। FM शिमला पर आइए सुनते हैं एक और भक्ति में पावन रचना, मानस गान। गायक स्वर लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति और साथी संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

ज्ञान तथा भक्ति में भेद संबंधी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश होता है, अतः वो स्वभाव से ही अविनाशी, चैतन्य तथा निर्मल होता है। किंतु माया बड़ी बलवती होती है और जीव उसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। वो माया के वशीभूत होकर अपने आप बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि आ जाती है और जीव आवागमन के भंवर में पड़ जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ती और जो दिखे ही नहीं उसे खोलें कैसे। हरि कृपा से मन में यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो तो धर्माचार और आस्तिकता के अवलंबन से निवृत्ति और विश्वास उपजता है।

अभी आप सुन रहे थे मानस कान। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। FM शिमला पर लीजिए अब सुनिए देश कान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए आप खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और बदलती सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव परिणामों की वास्तविक स्थिति जिला परिषदों और पंचायतों के निर्वाचन के साथ ही स्पष्ट होगी। जगत सिंह नेगी ने कल शिमला में कहा कि भाजपा शहरी निकाय चुनाव नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जो सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निकाय चुनाव में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान शंकर देहरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत हुई है। उन्होंने कल शिमला में कहा कि भाजपा नेता चुनाव नतीजों को लेकर झूठे वायदे कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने से भारत की विश्व में साख व कूटनीति और मजबूत हुई है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
1: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।

किसी जंगल में एक शिकारी जा रहा था। रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार उसको मिला, वो भी उसके साथ चल पड़ा। आगे उनको एक तपस्वी और एक साधु मिले, वे दोनों भी उनके साथ चल दिए। चारों आदमी जंगल में जा रहे थे। आगे उनको एक कुटिया दिखाई दी, उसमें एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे। चारों आदमी कुटिया के भीतर गए और बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने उन चारों को चार आशीर्वाद दिए। राजपुत्र चिरंजीवी मां जीव ऋषिपुत्र कहा, जीव वा मर वा साधु, व्याध मां जीव मां मरह। अर्थात बाबा जी ने राजकुमार से कहा, राजपुत्र तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा, ऋषिपुत्र तुम मत जियो। साधु से कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिकारी से कहा, तुम ना जियो ना मरो। बाबा जी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबा जी का आशीर्वाद समझ में नहीं आया। उन्होंने प्रार्थना की, बाबा जी कृपा करके अपने आशीर्वाद का तात्पर्य हमें समझाइए। बाबा जी बोले, राजा को नरकों में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरकों में जाता है। तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी। इसलिए मैंने राजकुमार को सदा जीते रहने का आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करने वाला जीता रहेगा तो तप करके शरीर को कष्ट देता रहेगा। वो मर जाएगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया जिससे वो सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वो जीता रहे तो भी आनंद, मर जाए तो भी आनंद। इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है, वो जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरकों में जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि तुम ना जियो ना मरो। मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि जीते जी भी आनंद रहे और मरने पर भी आनंद रहे। साधु बनना है पर साधु का वेश धारण करने की जरूरत नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी मनुष्य साधु बन सकता है। भगवान का भजन स्मरण करे और दूसरों की सेवा करे तो यहां भी आनंद है और वहां भी आनंद है। दोनों हाथों में लड्डू। कबीर जी ने कहा है, सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर। खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ सुबह 7:57, 8:30 और 9:57 पर। देश और दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है ये जानने के लिए आपको हम लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हिंदी में समाचार, दिन में 12 बजे, 1 बजे, 2:15 और रात 11 बजे अंग्रेजी में समाचार सुनिए, दिन में 12:05, 1:05, शाम 7:05 और रात 11:05 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9 रात 9 बजे। प्रादेशिक समाचार सुनिए, सुबह 9:20, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला आपके लिए हम लेकर आते हैं सुबह 7:15 पर। हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों का मीठा सा संगीत हम पहुंचाएंगे आप तक पहाड़ी लोकगीतों के माध्यम से। सुबह 8:32 पर लोक संगीत, पहाड़ी संगीत 11:30 पर, शिखरों के स्वर कार्यक्रम दिन में 2:30 पर। गीतों के अनमोल खजाने से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत आपके लिए फिल्म संगीत में सुबह 8:45, दिन में 12:10, 3:10, शाम 4 बजे और रात्रि 8:30 पर। हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों में लिए चलेंगे आपको हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर। आज कहाँ ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ 9:30 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम में। दस बजे आनंद लीजिए गीत गाता चल कार्यक्रम का। 11:05 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। महिलाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन हर रोज पेश किया जाता है, दिन में 12:20 पर। 1:10 पर म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम सबरंग एफएम शिमला के संग दिन में 2 बजे। 3:30 पर युवा साथी सुनते हैं अपना युववाणी कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होता है शाम 4:20 से, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम। 4:50 पर महास्वी कार्यक्रम, 5:20 पर किन्नौरी कार्यक्रम, 6:06 पर बिलासपुरी कार्यक्रम और 6:35 पर पेश किया जाएगा कुल्लूवी कार्यक्रम। किसान बागवान कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं शाम 7:10 पर। शाम की सभा का आगाज होता है एफएम शिमला पर 8 बजे से, जहां पर सबसे पहले आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत। एक फिल्म से ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:15 पर। 9:30 पर दिल की आवाज भी सुन, गजलों की हसीन और खूबसूरत महफिल सजेगी एफएम शिमला पर रात 10 बजे और 10:30 पर आनंद लीजिए सदाबहार फिल्मी नगमों का।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एक खूबसूरत सुबह का आगाज एफएम शिमला पर आपकी और हमारी प्यार भरी मुलाकात। आज के इस हसीन और खूबसूरत सफर में हम और आप हैं साथ साथ, जहां पर अब हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से वो खास कार्यक्रम हैं जो आज आप सुन पाएंगे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ

0: जी हाँ डियर लिसनर्स, ये है वो कुछ खास कार्यक्रम जो आज आप सुन पाएंगे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर।
1: सुरीला सफर संगीत का, साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो, क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। जी हाँ, आपकी सुबह को और भी हसीन और खुशनुमा बनाने के लिए लीजिए हाजिर है हम आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला लेकर। जी बिल्कुल, सुबह की ठंडी हवाएं और उगते सूरज की सुनहरी किरणों के साथ आइए एक और नई खूबसूरत सुबह का स्वागत करते हैं और आगाज करते हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का इस सकारात्मक विचार के साथ। सफलता की ऊंचाइयां उन्हें ही मिलती हैं जो हर सुबह एक नए हौसले के साथ उठते हैं और अपने सपनों को सच करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। देखिए, याद रखिए, पहाड़ चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, चढ़ाई कदम दर कदम ही पूरी होती है। ठीक वैसे ही जीवन की हर मुश्किलें धीरे धीरे धैर्य और विश्वास से आसान बन जाती हैं। तो उठिए, मुस्कुराइए और आज के दिन को अपना सबसे बेहतरीन दिन बनाने का संकल्प लीजिए और बस यूं ही बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर। सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

वेल डियर लिसनर्स, इतिहास हमें सिर्फ बीता हुआ समय नहीं बताता बल्कि ये भी सिखाता है कि छोटे छोटे कदम कैसे दुनिया बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि समय की सुई अब हमें ले चलने वाली है इतिहास के सफर पर, जहां पर अब हम जानेंगे आखिर क्या कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी आज के दिन हमारे इतिहास में। आज है 20 मई सन 2026। देखिए, 15वीं शताब्दी में यूरोप के देश भारत के मसालों और व्यापार के लिए नए समुद्री रास्ते खोज रहे थे। इसी मिशन पर निकले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा महीनों की कठिन समुद्री यात्रा के बाद 20 मई 1498 को आज ही के दिन भारत के कालीकट तट पर पहुंचे थे। ये घटना इसलिए भी ऐतिहासिक बनी क्योंकि पहली बार यूरोप से सीधे समुद्री रास्ते द्वारा भारत तक पहुंचना संभव हुआ। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ा और आगे चलकर यूरोपीय शक्तियों के आगमन का रास्ता खुल गया। सोचिए, उस दौर में महीनों तक समुद्र में रहकर नई दुनिया खोज निकालना कितना बड़ा साहस रहा होगा। वहीं 20 मई 1902 की अगर हम बात करें तो करीब 400 साल तक स्पेन के कब्जे में रहने के बाद क्यूबा ने लंबा संघर्ष किया और फिर अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध हुआ, जिसके बाद 20 मई 1902 को क्यूबा आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बना और आज भी क्यूबा में 20 मई को ऐतिहासिक दिन माना जाता है। तो और भी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे इसी कार्यक्रम में। आप यूं ही बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

वेल गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर, जहां पर बात हो रही है आज के इतिहास के। जी बिल्कुल, 20 मई 1927 को आज ही के दिन अमेरिकी पायलट चार्ल्स न्यूयॉर्क से अपनी ऐतिहासिक उड़ान पर निकले। अगले दिन उन्होंने अकेले विमान उड़ाकर अटलांटिक महासागर पार कर इतिहास रच दिया। उनकी इस उड़ान ने दुनिया में हवाई यात्रा के नए युग की शुरुआत कर दी। आज ही के दिन हबल स्पेस टेलीस्कोप की पहली तस्वीरें सन 1990 में। आज ही के दिन जी हाँ, अंतरिक्ष की दुनिया में 20 मई बेहद खास माना जाता है। इसी समय के आसपास नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की अद्भुत तस्वीरें भेजनी शुरू की और इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड को बेहतर समझने में मदद की। और आपको बताएं कि आज भी हबल द्वारा ली गई तस्वीरें लोगों को हैरान कर देती हैं।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

आज के इतिहास की बात हो रही है एफएम शिमला पर गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में। 20 मई 1965, जी हां, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान मारुत भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए HP-24 मारुत ने महत्वपूर्ण उड़ान परीक्षण पूरे किए। ये भारत का पहला स्वदेशी जेट फाइटर विमान था और इसकी डिजाइन में जर्मन विमान विशेषज्ञ कुर्त टैंक का भी योगदान था। इस उपलब्धि ने भारत को तकनीकी रूप से नई पहचान दी। आज ही के दिन जिया ब्लू जीन्स का पेटेंट हुआ सन 1873 में। आज ही के दिन आपको हम बताएं कि जो जीन्स दुनिया भर में फैशन बन चुकी है उसकी शुरुआत भी आज ही के दिन 20 मई को हुई थी। लेवी स्ट्रॉस और जैकॉब डेविस को ब्लू जीन्स बनाने का पेटेंट मिला। आपको बताएं कि पहले ये कपड़े मजदूरों के लिए बनाए गए थे क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ थे, लेकिन धीरे धीरे यही जीन्स युवाओं की पहचान बन गई। जी हाँ, मीठी सी हलचल, मीठा सा शोर आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर।

देखिए लिसनर्स, प्रकृति को एक कलाकार के रूप में देखा जाए तो उसे संदेशों का कोश भंडार कहना अनुचित नहीं होगा। भगवान ने इस संसार को प्रकृति के रूप में एक अनमोल भेंट प्रदान की है। मंद मंद मुस्कुराते फूल, कलकल करती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रंग बिरंगे पेड़ पौधे जो हमेशा से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए, ये प्रकृति वो है जो हर उदास जीवन का एकमात्र प्राकृतिक उपचार करने में सक्षम और मन मस्तिष्क को नई स्फूर्ति से भर देता है। बड़े बड़े कवि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति संरक्षण को अपनी सहचरी बनाकर उससे प्रोत्साहित होकर अनेकों रचनाएं लिख डाली जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। प्रकृति संरक्षण की दी हुई देन में 6 ऋतुएं एक के बाद एक आकर चली जाती हैं। कभी ठंडी रात को तो कभी ग्रीष्म ऋतु की लू के थपेड़े, कभी बसंत ऋतु के नए कोमल फूल की बहार तो कभी पतझड़ में पत्तों का गिरना हमें प्रकृति की संरक्षण की परिवर्तनशीलता का आभास कराते हैं और हर परिस्थिति में एक समान रहने की शिक्षा भी देते हैं।

देखिए ना लिसनर्स, प्रकृति का हर स्वरूप हमारे लिए संदेशवाहक है। ये हमें परोपकार करना सिखाती है। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, नदियां कभी भी जल अपने लिए एकत्र नहीं करती। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आता है जो हमें ये बताता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति ने हमें इतनी सब चीजें दी हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है हमारा कि हमें इन सभी चीजों को सहेज कर रखना चाहिए और इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। जी हाँ, प्रकृति संरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हमको नशीली गैसों जैसे गैसों को उत्पन्न करने से रोकना होगा। उपयोग किए पानी का चक्रीकरण करना होगा। धरती से पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए हमें वर्षा का पानी एकत्र करना होगा। प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल बंद करना होगा और बिजली का कम इस्तेमाल करना और पहाड़ों को खत्म करने से रोकना होगा, जिससे हमारी प्रकृति का संरक्षण सही ढंग से चलता रहे। और यहाँ FM शिमला पर आपका और हमारा ये संगीतमय सफ़र भी यूं ही चलता रहेगा। तो बस आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: वेल गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: सूचना मनोरंजन शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज।

0: चलिए लिसनर्स, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आप 9:30 पर सुनेंगे कुदरत की रंग कार्यक्रम। 10 बजे आप आनंद ले सकते हैं गीत गाता चल कार्यक्रम का। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन हर रोज पेश किया जाता है दिन में 12:20 पर। एक बजकर 10 मिनट पर सुनना ना भूलिए म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम, और 2 बजे का समय रहेगा सबरंग कार्यक्रम का। तो ये है हमारे दिन की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। FM शिमला पर लीजिए अब सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पर्यावरण विभाग द्वारा 21 और 22 मई को शाहपुर परिसर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता और विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने से भारत की विश्व में साख व कूटनीति और मजबूत हुई है। सिकंदर कुमार ने कहा कि ये केवल पुरस्कार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते वैश्विक गौरव का प्रतीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को कल खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत और श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत पुडुचेरी और हिमाचल के बीच सांस्कृतिक व शैक्षणिक आदान प्रदान की नई शुरुआत हुई है। इसके तहत NIT पुडुचेरी के 48 छात्रों और 5 फैकल्टी समन्वयकों का एक दल कल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन और आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आंगनबाड़ी हेल्पर और मिड डे मील वर्करों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के लिए लगाने का विरोध किया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पंचायत चुनाव में मिड डे मील वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों की ड्यूटी न लगाई जाए। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं। समाचारों के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य

0: कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
1: इंडिया इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
2: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
5: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
7: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते

0: हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुँच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review Joint Strategic Action Plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years.

व उद्योग विभाग से संबंधित प्राप्त विभागीय उत्तरों पर विचार विमर्श किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्य की गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर झीलों को राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने बीते दिनों लोकसभा में नियम 370 के तहत ये मामला उठाया था। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से तेज धूप के चलते गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। बीते 24 घंटों के दौरान 11 शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने आज व कल कांगड़ा व सोलन जिले के कुछ भागों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।

जी हाँ डियर लिसनर्स, ये लोक धुन सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि एफएम शिमला पर अब हम लेकर आए हैं आपके लिए पहाड़ी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लहरू राम सांख्यान के गाए इस लोकगीत के साथ।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर आइए अब आप और हम मिलकर आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं अजनबी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

जोशीला फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, या यूं कहें कि दिल को छू लेने वाला गीत, राजा और रंग फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में अभी आपने सुना शोले फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज़ में गीत गाता चल फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर चलिए अब आपको बता दें हमारी आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:31 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। 10 बजे का समय रहेगा रिमझिम कार्यक्रम का। 11:05 पर सुनिए लोक संगीत और 11:30 पर पेश किया जाएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:20 कार्यक्रम सुनती हैं महिला सम्मेलन दिन में 12:20 पर। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा दिन में 1:10 पर और 2 बजे का समय रहेगा सुनहरी करने कार्यक्रम का। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए हिमगुंजन कार्यक्रम और 2:45 पर लेकर आएंगे आपके लिए फिल्म संगीत। किसान बागवान कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं 7:10 पर। शाम की सभा का आगाज होगा 8 बजे से, जहां पर सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे धारा रेखीत। 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत और 8:30

पर लुत्फ उठाइए सुगम संगीत का। नौ बजकर 15 मिनट पर सुनिए

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम सुनिए रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10 बजे आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। पुरानी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम सुरबहार आपके लिए 10:30 पर। जी हाँ डियर लिसनर्स, ये हैं हमारी आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर, FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल का युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्विरोध चुने गए 10,854 पदाधिकारी। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी धूप में बह रहे हैं पसीना। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल जम्मू में इंडिया ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 युवा निशानबाजों को सम्मानित करने के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कम आयु में इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनकी असाधारण प्रतिभा, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी देश का भविष्य है और उनकी उपलब्धियां उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि हमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने जा रहे चुनाव में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इनमें 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 ग्राम पंचायत प्रधान, 286 उप प्रधान और 10,307 वार्ड सदस्य शामिल है। इसके अलावा 131 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुई है। आयोग ने कहा कि निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब इन पदों पर मतदान नहीं होगा।

0: और इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक प्रक्रिया का बोझ कम होगा। आयोग ने कहा कि शेष पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होगा। पंचायतों के चुनाव परिणाम मतदान के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि पंचायत समितियों, जिला परिषदों और 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। उधर कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले की करीब 850 पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव में 12 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 330 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएंगे।
1: पूरा जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और स्मूथ हो, इसकी दिशा में हमारे सभी SDMs, BDOs और तहसीलदार ये लोग इसमें लगे हैं। हमने सेक्टर ऑफिसर्स एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी इसके अंदर डिप्लॉय किए हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी पोलिंग हो वो स्मूथ तरीके से हो। उसके बाद जो काउंटिंग है वहाँ पर हम एंटायर प्रोसेस को वीडियोग्राफ करें या वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर करें।
0: प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में राज्य की जनता ने प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर भरोसा जताया है और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। पठानिया ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में 47 नगर निकायों में से 29 में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को केवल 16 निकायों में ही जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय 21 और 22 मई को शाहपुर परिसर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। ये संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने कहा कि इस संगोष्ठी में देश विदेश के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी से प्राप्त शोध निष्कर्षों और सुझावों को उचित मंचों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि नीति निर्माताओं को पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में बेहतर और सुरक्षित निर्णय लेने में मदद मिल सके।
2: हमारा जो एनवायरनमेंट विभाग है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का किया है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शाहपुर में 21 और 22 मई को, क्योंकि हमारा 21 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऐसा करके है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, तो हम इसके संदर्भ में ये इकट्ठी 2 दिन की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य रूप से जो थीम रहेगा वो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेटिक एडॉप्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश नशा निवारण के पूर्व संयोजक व सलाहकार ओपी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में नशा रोकने में विफल रही है। ओपी शर्मा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य में नशा खत्म करने में गंभीर नहीं है और प्रदेश में डार्क वेब जैसे खतरनाक टूल के माध्यम से नशे की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि केवल पुलिस के भरोसे नशे को खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज का सहयोग और जागरूकता जरूरी है। ओपी शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने नियमों को दरकिनार कर नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है और इसमें राजनीतिक व्यक्ति को संयोजक बनाया गया है।
3: नशा निवारण बोर्ड का आज तक एक बैठक नहीं हुई, क्या कारण है? इस प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, जब लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ कि नशा निवारण बोर्ड की आज तक बैठक कन्वीनर कम एडवाइजर ने, सलाहकार महोदय ने या जो सदस्य सचिव हैं, एक्साइज एंड टैक्सेस के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस नशा निवारण बोर्ड की बैठक को क्यों नहीं किया? मैंने यह विषय माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष भी उठाया है।
0: केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान कुल्लू जिला में भी शुरू हो गया है। ये टीका किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। इस अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को HPV का टीका लगाया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
4: महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। कुल्लू जिला में भी ये अभियान शुरू हो चुका है तथा जिला में इसके तहत 39,089 किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक इस अभियान

0: के तहत 1630 किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। परंतु बीते दिनों सोशल मीडिया में इस वैक्सीन संबंधी कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई गई, जिस पर चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉक्टर रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है तथा भविष्य में ये किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाएगी। उन्होंने 14 वर्ष पूर्ण कर रही किशोरियों के परिजनों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों का HPV टीकाकरण जरूर करवाएं तथा ये पूर्णतः निःशुल्क है। इस बारे में ज्यादा जानकारी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ली जा सकती है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: प्रदेश में मई की गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश में इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने आज भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। शिमला और मनाली जैसे ठंडे शहरों में भी लोगों को दिन भर गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल भी 2 जिलों कांगड़ा और सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल 21 मई को कुछ जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में आंधी व बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अधड़ बारिश व बिजली चमकने की संभावना है। 23 व 24 मई को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है, जबकि मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। 25 मई को एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में 176 प्रधान, 286 उप प्रधान समेत 10,854 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, तबादले के खिलाफ याचिका दायर करने से रोकना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालने के समान। दैनिक जागरण की एक खबर है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छठे स्थान पर पहुंचा हिमाचल। मुख्यमंत्री के हवाले से हिमाचल दस्तक लिखता है, महिलाओं को ब्यूटी पार्लर बुटीक के लिए मिलेगा 3 लाख का ऋण। हिमाचल के 4 जिलों में चली लू शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, ऊना में 43.4 डिग्री तक पहुंचा पारा, अगले 48 घंटों के लिए हीट वेव का अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल का युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्विरोध चुने गए 10,854 पदाधिकारी। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी धूप में बाह रहे हैं पसीना। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा FM शिमला पर भी प्रसारित किए गए। ये आकाशवाणी शिमला है। हमारी अगली उद्घोषणा कुछ ही देर बाद।
4: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एक बार फिर तहे दिल से स्वागत आप सभी सुनने वालों का आप ही के अपने कार्यक्रम कुदरत के रंग में, जहां सुबह की पहली किरण पेड़ों की हल्की सी सरसराहट और परिंदों की मीठी आवाज दिल को सुकून दे जाती है। जिंदगी की इस भागदौड़ में अगर कहीं थोड़ा सा ठहरना हो तो कुदरत हमेशा अपनी बाहों में जगह दे देती है, कभी बारिश की बूंदों में, कभी मिट्टी की खुशबू में। तो आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो हमसफर बबीता शर्मा और आप सुन रहे हैं कुदरत के रंग, जहां हर एहसास कुदरत के साथ और भी हसीन हो जाता है।

वेल, आज के इस हसीन और खुशनुमा सफ़र में हम और आप चलेंगे साथ साथ। कौन सी वो खूबसूरत जगह है बताएंगे आपको, लेकिन इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

वेल डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर कुदरत की रंग कार्यक्रम, जहां पर आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसे एक ऐसे रहस्यमय और खूबसूरत पहाड़ की ओर, जहां बादल धरती को छूते हैं, जहां जंगलों की खामोशी भी कहानियां सुनाती हैं और जहां इतिहास, प्रकृति और रोमांच तीनों एक साथ मिलते हैं। जी हाँ, आज का हमारा खास सफर है सोलन का करोल टिब्बा। तो दिल को पहाड़ों की ठंडी हवा के हवाले कर दीजिए और चलिए निकल पड़िए हिमाचल की खूबसूरत वादियों की ओर। देखिए, सोलन को मशरूम सिटी भी कहा जाता है, लेकिन इसी सोलन की गोद में छुपा है एक अद्भुत पहाड़ करोल टिब्बा। करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति का संगम भी माना जाता है। जैसे जैसे आप करोल टिब्बा की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटने लगता है। चारों तरफ देवदार और चीड़ के घने जंगल, ठंडी ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही हो। देखिए, पहाड़ों की हवा में एक अलग ही सुकून होता है। तो गर्मी के इस मौसम में अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो सोलन का करोल टिब्बा एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आप सभी के लिए।

एफएम शिमला पर कुदरत की रंग कार्यक्रम में आज हम सैर कर रहे हैं सोलन के करोल टिब्बा की। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो करोल टिब्बा आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ की ट्रैकिंग लगभग 5 से 6 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। रास्ता थोड़े चढ़ाई वाला जरूर है, लेकिन हर मोड़ पर जो नज़ारे मिलते हैं ना, वो सारी थकान भुला देते हैं। ऊपर पहुंचकर जब आप बादलों के बीच खड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान बस हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर हो। चलिए आपको बता दें, करोल टिब्बा सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक और पौराणिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुफा है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। लोक कथाओं के अनुसार ये गुफा बहुत दूर तक जाती है, यानी इतिहास और रहस्य दोनों यहाँ साथ साथ चलते हैं। अब बात करते हैं सनराइज और सनसेट की। अगर आप सुबह सुबह सोलन के करोल टिब्बा पहुंच जाएं तो सूर्योदय का दृश्य आपका दिल जीत लेगा। पहाड़ों के पीछे से निकलती सूरज की पहली किरण जब बादलों पर पड़ती है तो पूरा आसमान सुनहरा हो जाता है, और शाम का सनसेट भाई ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई पेंटिंग बना दी हो।

अगर आपको फोटो खींचना पसंद है तो सोलन का करूल टिब्बा आपकी गैलरी को खूबसूरत यादों से भर देगा। हरे जंगल, पहाड़ी रास्ते, बादलों से ढके ऊंचे पहाड़, हर जगह एक पोस्टकार्ड जैसी फीलिंग देते हैं। यहाँ आपको कई तरह के पक्षी और छोटे वन्य जीव भी देखने को मिल सकते हैं। सुबह के समय जंगलों में गूंजती चिड़ियों की आवाज दिल को एक अलग ही शांति देती है। जी बिल्कुल, करोल टिब्बा हमें सिखाता है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि प्रकृति के करीब होने में है। और देखिए ना, कभी कभी पहाड़ों की खामोशी हमारे दिल की आवाज़ सुनने में मदद करती है। अगर आप भी अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं और सोलन के करोल टिब्बा घूमने का आप प्लान करना चाहते हैं तो मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि बरसात में रास्ते थोड़े से फिसलन वाले हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना बेहद ज़रूरी है।

अब कुछ लोग पहाड़ों पर सिर्फ घूमने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ खुद को ढूंढने जाते हैं। और यकीन मानिए, करोल टिब्बा ऐसी ही एक जगह है। तो अगर आप जिंदगी की भागदौड़ से थक जाएं, तो फुर्सत के कुछ पल निकालकर सुकून भरे पल बिताने के लिए हिमाचल की इन हसीन और खूबसूरत वादियों में ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ हवा भी कहानी सुनाती है और पहाड़ भी दिल को सुकून दे जाते हैं।

वेल डियर लिसनर्स, कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आज हमने सैर की हिमाचल के एक बहुत ही खूबसूरत जगह सोलन के करोल टिब्बा की। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। FM शिमला पर लीजिए अब खुद को अपडेट कीजिए FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।

0: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने जा रहे चुनाव में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इनमें 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 ग्राम पंचायत प्रधान, 286 उप प्रधान और 10,307 वार्ड सदस्य शामिल है। आयोग ने कहा है कि निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब इन पदों पर मतदान नहीं होगा, इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक प्रक्रिया का बोझ भी कम होगा। कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले की करीब 850 पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव में 12,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला 21 और 22 मई को शाहपुर परिसर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। यह संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने कहा कि इस संगोष्ठी में देश विदेश के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में राज्य की जनता ने प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर भरोसा जताया है और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। हिमाचल प्रदेश नशा निवारण के पूर्व संयोजक व सलाहकार ओपी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में नशा रोकने में विफल रही है। ओपी शर्मा ने शिमला में कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में नशा खत्म करने के में गंभीर नहीं है और प्रदेश में डार्क वेब जैसे खतरनाक टूल के माध्यम से नशे की आपूर्ति हो रही है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल जम्मू में इंडिया ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 युवा निशानबाजों को सम्मानित करने के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कम आयु में इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनकी असाधारण प्रतिभा, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। और अब मौसम। प्रदेश में मई की गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश में इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने आज भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर रूल चलने का अलर्ट जारी किया है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना। आज हम

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के इस हसीन और खूबसूरत सफर में हम और आप हैं साथ साथ, जहां पर आइए अब सुनते हैं गीत गाता चल।

0: आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में अभी आपने सुना बाजीगर फिल्म का गीत।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए राजू बनकर जेंटलमैन फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: विनोद राठौर की आवाज में अभी आपने सुना दीवाना फिल्म का गीत।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: जानम समझा करो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज में।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं गीत गाता चल कार्यक्रम का। हंड्रेड डेज मूवी का सॉन्ग आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में।

0: जी हाँ डियर लिसनर्स, अगर ये गाने आपको भी पसंद आ रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अच्छे गाने दिल खोलकर सुनने के लिए होते हैं, है ना?
1: तेरा

वेल, इसी लवली सॉन्ग के साथ गीत गाता चल कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब अपनी रेडियो हमसफर बबीता शर्मा को दीजिए इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस यूं ही सुनते रहिए हमारे साथ FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल जम्मू में इंडिया ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो युवा निशानबाजों को सम्मानित करने के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कम आयु में इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनकी असाधारण प्रतिभा, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने जा रहे चुनाव में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इनमें 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 ग्राम पंचायत प्रधान, 286 उप प्रधान और 10,307 वार्ड सदस्य शामिल है। इसके अलावा 131 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुई है। आयोग ने कहा कि निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब इन पदों पर मतदान नहीं होगा और इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक प्रक्रिया का बोझ भी कम होगा। आयोग ने कहा कि शेष पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होगा। प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में राज्य की जनता ने प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर भरोसा जताया है और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। पठानिया ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में 47 नगर निकायों में से 29 में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को केवल 16 निकायों में ही जीत मिली है।
2: 2017 का सेमीफाइनल हमने जीता, टिकरीगढ़, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, इवन की ऊना, सोलन में रहे हैं। अब प्रदेश के अंदर वैल्यूट करके देखे तो हम जो जीता, कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव किन पे चुनाव हुए तो आपके सामने धनसार का रिजल्ट भी आएगा, पालनपुर का रिजल्ट भी आएगा, वो तो उसका प्रश्न का जवाब सीधा मिल जाएगा।
1: उधर कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए

0: जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और स्मूथ हो, इसकी दिशा में हमारे सभी SDMs, BDOs और तहसीलदार ये लोग इसमें लगे हैं। हमने सेक्टर ऑफिसर्स एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी इसके अंदर डिप्लॉय किए हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी पोलिंग हो वो स्मूथ तरीके से हो। उसके बाद जो काउंटिंग है वहाँ पर हम एंटायर प्रोसेस को वीडियोग्राफ करें या वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर करें।
0: प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा है कि प्रदेश पुलिस राज्य के 75 मुख्य स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम संचालित कर रही है। इस हाईटेक प्रणाली के माध्यम से अभी तक लाखों मोटर वाहन नियम उल्लंघनों का पता लगाया गया है और बिना मानवीय हस्तक्षेप के करोड़ों रुपए के चालान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से ट्रैफिक प्रवर्तन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा कि प्रदेश पुलिस को एक आधुनिक, तकनीक सक्षम, जनोन्मुखी और कल्याणकारी पुलिस बल बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति भी विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश में मई की गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश में इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने आज भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। शिमला और मनाली जैसे ठंडे शहरों में भी लोगों को दिन भर गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल भी 2 जिलों कांगड़ा और सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल 21 मई को कुछ जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में आंधी व बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अधड़ बारिश व बिजली चमकने की संभावना है। 23 व 24 मई को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है, जबकि मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। 25 मई को एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 PM। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुन रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, तहे दिल से स्वागत आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। तो बताइए जनाब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना, बढ़िया है ना? जी हाँ, बढ़िया ही होंगे। एफएम शिमला का साथ हर पल जो है आपके साथ, और हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि क्योंकि एफएम शिमला जिनके साथ है ना, वो कभी अकेले नहीं होते। रेडियो एक ऐसा हमसफ़र है जो सदियों से आपका साथ निभाता आ रहा है और सदियों तक आपका साथ यूं ही निभाएगा। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफ़र, रेखा ठाकुर। जी हाँ, हम और आप मिलकर तय करने वाले हैं आज का ये सुहाना सफ़र। तो चलिए, लिए चलते हैं आपको एक खूबसूरत से सफ़र पर, जहाँ हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ढेर सारे तराने, कुछ नए तो कुछ पुराने। हमेशा की तरह करेंगे आपसे ढेर सारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत नगमे, फिल्मी दुनिया से लिए चलेंगे आपको हिमाचल की खूबसूरत वादियों में और सुनवाएंगे हिमाचली लोकगीत। महिलाओं के लिए कुछ खास लेकर आएंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम में। युवा साथियों का भी पूरा ख्याल रखेंगे और युवाणी कार्यक्रम में उनके लिए भी कुछ खास लेकर आने वाले हैं युवाणी कार्यक्रम में।

बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं कि देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से भी लगातार आप सभी को अवगत करवाते रहेंगे समय समय पर सिर्फ और सिर्फ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला पर। तो आइए आगाज कर रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का। मेरे अपने फिल्म का गीत पेश करने जा रहे हैं हम आप सभी के लिए किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। जी हाँ, मुकेश और किशोर कुमार को लीजिए सुनिए FM शिमला पर। आपके हालचाल करते हैं ठीक ठाक। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत है, इंजॉय कीजिए हमारे साथ।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मिलन फिल्म का गीत आप सभी को सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में पेश कर रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: पुरानी फिल्मों से, जी हाँ, कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। कार्यक्रम में अगला गीत पेश करने जा रहे हैं आप सभी के लिए, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को हिमालय की गोद में, फिल्म का ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के संगीत, यह है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

पुरानी फिल्मों से। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी फिल्म शिमला पर। दोस्तों, ये वो पुराने गीत हैं जो हमें ले जाते हैं हमारे बचपन में, हमारे पुरानी यादों में, हमें जोड़े रखते हैं अपने पुराने साथियों से। तो लीजिए, एक ऐसा ही गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं आकाशवाणी फिल्म शिमला पर। मुकेश को सुनते हैं सफ़र फिल्म में।

वहां का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है। तुम्हारे एक न होने से वहां लेकिन कयामत है।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे शतरंज फिल्म से। जी हाँ, आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ। 11:30 होने को हैं, जल्द ही हाजिर हो रहे हैं लेकर कार्यक्रम पहाड़ी संगीत।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हमको मोहब्बत करेगा
1: FM।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ये मीठी सी धुन मन को ऐसे भाए जैसे मानो हम पहुंच गए हरे हरे पहाड़ों में। जी हाँ, खिलखिलाते नज़ारों में बहते बहते झरने, जिनका आनंद हमारी जो आंखें हैं ले रही हैं और मन को सुकून सा मिल रहा है, कुछ ऐसी ही है ये मीठी सी धुन। पहाड़ी संगीत लेकर हाजिर हो चुके हैं हम आप सभी के लिए आकाशवाणी FM शिमला पर। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं हम मदन झालटा की आवाज़ में इस लोकगीत के साथ।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला के संग। कुलदीप सिंह को अभी आपने सुना। आइए कार्यक्रम में अगला लोकगीत हम पेश करने जा रहे हैं कृष्णा शर्मा की आवाज में।
0: आपका गांव है आपका गर्व,

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

बलदेव सांख्यान की आवाज़ में पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। 103.7 MHz पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोपहर के 12 बजने को हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलिसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग

0: और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर, जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he's looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue their conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, PM Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity and centuries-old civilizational wisdom of both nations. The two leaders said their cooperation reflects a shared understanding that prosperity and security in the 21st century will depend on the ability of nations to innovate, manage energy transitions and strengthen strategic sovereignty. Defense Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart Ahn Ju-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defense, defense industry and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defense College of India, the Korea National Defense University and UN Peacekeeping Cooperation. The minister said that he is looking forward

0: स्वागत आप सभी का एक बार फिर से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ फिल्म संगीत लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

थिरकेंगे आपके पैर भी जब सुनेंगे आप ये गीत FM शिमला के साथ। जी हाँ, सिलसिला है प्यार का, ये फिल्म का गीत। अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण की आवाजों में, गीत के बोल समीर के और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

लीजिए एक और प्यारा सा नगमा, पेश है आप सभी के लिए FM शिमला पर अलका याग्निक विनोद जी हाँ और साथ में कुमार सानू की आवाजों में राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म का ये गीत।

मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: कहते हैं गुजरा हुआ वक्त और झरने का बहता पानी एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता।
1: जी, और ऐसे ही जो ये समय है वो भी दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। तो बस बने रहिए आकाशवाणी शिमला के साथ और स्वागत करते हैं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम महिला सम्मेलन में।
0: और आज हम हैं आपके साथ रेणु कश्यप और
1: मैं सुनीता, आप सभी को हमारा
0: नमस्कार। देखिए सुनीता, पानी की अहमियत बड़ी कमाल की होती है। अगर दरिया में हो तो गहराई छुपाती है, और अगर आंखों में हो तो दिल के राज।
1: जी बिल्कुल, लेकिन रेनु ये भी बात है कि इसके लिए पानी का होना भी ज़रूरी है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम पानी संरक्षित नहीं करेंगे, पानी को नहीं बचाएंगे, तो ना है तो वो दरिया की गहराई बता पाएगी, छुपा पाएगी, गहराई बता पाएगी, और ना ही आंखों के राज वो छुपा पाएगी।
0: बिल्कुल। देखिए हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, और हमारी धरोहर हमारी पहचान।
1: जी,
0: तो हमारी धरोहर हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें नदियाँ, जंगल, पहाड़ आते हैं। इन सब का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी, और ऐसी ही जिम्मेदारी है हम सब की अपने आसपास के जो जल स्रोत हैं उनका संरक्षण करने की। हमारे गाँव में हमारे आसपास जो भी बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, उनको बचाने के लिए उनकी नियमित सफाई, जल संरक्षण हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है। लोगों को इन सब के प्रति जागरूक करना भी उतना ही ज़रूरी है।
0: बिल्कुल सुनीता, अभी मुझे वही दौर याद आ रहा है कि जब लोग सुबह सुबह सबसे पहले साफ ताज़ा पानी भरने के लिए कुएं पर जाते थे, बावड़ियों में बावड़ियों के पास जाते थे, और पीने के लिए ही नहीं बल्कि सभी कार्यों के लिए जो जो पानी है वो इन्हीं जल स्रोतों से आता था, और साथ ही समय समय पर इन जल स्रोतों का जो रखरखाव है वो भी किया जाता था, साफ सफाई भी की जाती थी।
1: जी बिल्कुल, और कहीं कहीं तो रेनू देखिए आज भी इनको बड़े अच्छे से जो है इन जल स्रोतों की जो है वो देखभाल की जाती है, लेकिन जहाँ पर इन जल स्रोतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है वहाँ पर ज़रूर इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इनके लिए कुछ खास नहीं करना होता, बस छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उनका ख्याल रखते हैं और सभी लोग मिलकर उस पर अमल करें तो जो हमारी ये प्राकृतिक धरोहरें हैं ये हमें और अच्छे से जो है अपना साथ लंबे समय तक दे सकती हैं।
0: बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जब बावड़ियों के आसपास ना जब पानी लेने नहीं जाते हैं और इनका रखरखाव अच्छे से नहीं होता है, तो कूड़ा कचरा है, पत्ते हैं, कहीं कोई भी चीज़ें हैं वो सारे इनमें भर देते हैं, और आसपास कई बार क्या होता है कि लोग कूड़ा भी फेंकना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है ये सारे जो संसाधन है वो सारे ख़राब हो जाते हैं, इनका जो पानी है वो भी दूषित हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है कि ये बंद होने

0: शुरू हो जाते हैं, जो प्राकृतिक
1: जी
0: स्रोत है वो ही खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद क्या करते हैं लोग, फिर वो नल का पानी है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को संभाल करके रखा था। तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम इन चीज़ों को जो कहीं खो चुकी थी उनको दोबारा से इनका संरक्षण करें, इनको दोबारा से फिर से यूज़ करें, इनका प्रयोग में लाएँ। तो देखिएगा जो हमारे आसपास का वातावरण वो भी शुद्ध हो जाता है। तो जो पानी है उसको दूषित होने से बचाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है।
1: जी बिल्कुल। और इसके लिए आप अपने स्तर पर अपने आसपास के कुछ लोगों को मिलकर कोई स्वच्छता अभियान भी चला सकते हैं,
0: जी
1: या दो चार लोग मिलकर के अगर जाएं उनको भी थोड़ा जागरूक करें अपने आस पड़ोस में, सभी तक ये मैसेज भी आप पहुंचा सकते हैं कि जो हमारे आस पास की बावड़ियां हैं या कुएं हैं उनकी साफ सफाई की जाए। और साथ ही साथ अगर उसके आसपास कोई जाली या बाड़ लगा दिया जाए ताकि लोग उसमें कूड़ा करकट ना फेंके या फिर किसी तरह
0: गंदी
1: के जो है गंदगी है वो उसके आसपास ना हो। और इसके साथ साथ बहनों सबसे ज़रूरी है पेड़ों का रोपण करना, यानी वृक्षारोपण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जल स्रोतों के नज़दीक बावड़ियों के आसपास छायादार और मजबूत जड़ वाले पेड़ अगर होंगे तो मिट्टी को कटने से बचाएंगे और जल स्तर को भी बनाए रखेंगे।
0: बिल्कुल। देखिए प्राकृतिक जो जल स्रोत है उनका संरक्षण और रख रखाव आसान है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर, जिनके बारे में हमने अभी बात की, हम इन जल स्रोतों का संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही वनों की कटाई रोक करके, पानी के रिसाव और प्रदूषण को नियंत्रित करके, और साथ ही जो वर्षा जल है उसका संचयन करके भी, इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना कर हम इन जो जीवनदायिनी संपदा है उसको सुरक्षित रख सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो एक कदम बढ़ाएं गांव की स्वच्छता और खुशहाली के लिए, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण में स्वेच्छा से अपना योगदान दें। और जानकारी के साथ साथ अगर बहनों के लिए एक गीत भी हो जाए रेनू।
0: जी बिल्कुल।

0: तो सुनीता देखिए, जो ज़िंदगी है वो भी ऐसे ही चलती रहती है। धूप हो, छाँव हो, खुशी हो, गम हो, हर एक पल में जो ज़िंदगी है और जो वक्त है वो हमेशा चलता ही रहता है। और जब गर्मियों की बात आती है तो भाई चलते चलते क्या हो जाता है, पसीने पसीने भी हो जाते हैं ना।
1: जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बात की कि मौसम कोई भी हो, तेज़ धूप, गर्म हवाएं, और ख़ास तौर पर आजकल जो ये पसीने से भरा मौसम है बहनों, तो आप समझ ही गई हो कि हम बात कर रहे हैं गर्मियों की। और जैसा कि आप सभी जानती हैं कि गर्मियों ने दस्तक दे दी है, और ऐसे मौसम में अगर हम अपनी सेहत के साथ साथ स्वच्छता का भी ख्याल रखें तो गर्मी का मौसम भी मस्ती और ताज़गी भरा हो सकता है।
0: बिल्कुल हो जाएगा। और देखिए, गर्मियों में सेहत के लिए जितना ज़रूरी पौष्टिक आहार है उतना ही ज़रूरी है शरीर को साफ और स्वच्छ रखना। स्वच्छता का सीधा संबंध होता है हमारी सेहत से, और घर की साफ सफाई के साथ साथ पर्सनल हाइजीन का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है।
1: बिल्कुल। और गर्मियों में पर्सनल हाइजीन बहनों इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पसीने और नमी के कारण त्वचा पर बैक्टीरिया और संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है वो भी ज़्यादा होता है। सही साफ़ सफाई के अभाव में शरीर से दुर्गंध आना, घमौरियाँ होना और त्वचा में रैशेज हो सकते हैं जो किसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मौसम कोई भी हो, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है।
0: तो सुनीता देखिए, जो ये दुर्गंध आना, घमौरियाँ होना, त्वचा में रैशेज होना, ये ना आम सी समस्याएं मानी जाती हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इनके ऊपर खास ध्यान नहीं
1: नहीं,
0: देते हैं कि
1: जी
0: भाई
1: जी
0: गर्मियां हैं
1: बिल्कुल
0: तो होगा ही, वो उनका ऐसा मानना होता है। लेकिन क्या है, इसके जो कारण है उसके ऊपर वो जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि जो ये आते हैं, जो ये रैशेज है या फिर बैक्टीरिया है, संक्रमण है, वो सारा जो आता है वो है संक्रमण की वजह से।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: संक्रमण कब फैलता है, जबकि हम साफ सफाई का ख्याल
1: नहीं
0: नहीं रखते
1: रखते
0: हैं। तो
1: हैं।
0: मेन बात यही है कि आपने जो पर्सनल हाइजीन है उसका बहुत खास ख्याल रखना है। गर्मियों में के मौसम में तो कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल रखना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। तो आइए बहनों, आज के सेगमेंट सेहत जो स्वास्थ्य चर्चा है हमारी, उसमें हम जानेंगे व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में, साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों की जिन्हें अपनाकर हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं।
0: तो देखिए, जो साफ़ सफाई की सबसे पहले बात आती है तो वो आती है नहाने की,
1: जी
0: ठीक है, कि जिससे रोज़ नहाना एक अच्छी आदत मानी जाती है। और इससे क्या होता है कि पूरे शरीर की सफाई हो जाती है। और बात जब गर्मी की हो रही हो तो आप दिन में 2 बार भी नहा सकते हैं, क्योंकि जैसे जब हम घर पर जाते हैं वापस, जब शाम को जाते हैं तो क्या होता है कि तरबतर होते हैं गर्मियों में पसीने से।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: जब अगर वैसे ही हम शाम तक रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर पर जैसे वो जो पसीना है, बदबू है, वो सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं। तो अगर हम घर जा करके नहा लेते हैं अच्छे अच्छे तरीके से, तो क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया वगैरह है इनसे हम बच जाते हैं, और एकदम से ना फ्रेश भी महसूस करता है
1: जी
0: इंसान।
1: बिल्कुल आलस भी थोड़ा दूर हो जाता है, जो
0: हाँ
1: आजकल गर्मियों का आलस है बहनों। और ख़ास तौर पर आपने भी रेनू नोटिस किया होगा कि दोपहर के वक्त हम चाहे धूप में भी नहीं जाएं, तब भी घर पे जो है ना थोड़ा सा आलस आने लगता है और वो जो एक ताज़गी है वो खो सी जाती है। तो अगर आप घर पे भी बहनों रहती है और मौसम गर्म है तब भी आप जो है नहा लें, उससे आप एकदम से फ्रेश महसूस करेंगी। और अगर आप ज़्यादा धूप में रहे हैं या आपको बहुत पसीना आता है तो घर पहुँच कर आप ज़रूर नहाएं, और बहुत देर तक गीले या पसीने वाले कपड़े पहनकर ना रखें क्योंकि बहनों इससे फंगल इन्फेक्शन या खुजली की समस्या हो सकती है। आपने देखा होगा बहनों कि जब भी हम कहीं से तर बतर पसीने में गर्मियों के मौसम में आते हैं तो हल्की सी इचिंग जो है वो बॉडी में
0: जी
1: होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब जो है वो पसीने और इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो रोज़ाना आप साफ़ कपड़े पहने और हमेशा हल्के, ढीले और सूती

0: कपड़े ही पहने। कॉटन के कपड़े पसीना सोख लेते हैं और शरीर को ठंडक भी देते हैं।
1: बिल्कुल, तभी तो देखिए जब भी हम कहीं अब बाजार भी जाते हैं ना, तो हर रोज यही देखते हैं कि लोग ना जो कॉटन के कपड़े हैं वो ज़्यादा पहनना शुरू कर दिया। जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो लोग वैसे तो कॉन्शियस हैं इस बारे में कि भाई कौन से मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। अब जैसे कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो जैसे लाइट शेड वाले जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम अगर हम ध्यान देते हैं तो जो गर्मी का प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। और देखिए हाथों के जरिए भी जो बहुत से कीटाणु हैं वो हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, तो इसलिए खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले अपने हाथों को, और जैसे कि हम टॉयलेट वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी हाथों को बहुत अच्छी तरीके से धोना ज़रूरी है। अच्छे धोना और अच्छे से धोना, इनमें दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है ना कि जब बस हाथ में आपने साबुन लगाया और एकदम से साफ कर लिया, लेकिन आपने 10 से 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से हाथों को रगड़ना है और उसके बाद साफ़ करके, तब साफ तौलिए से साफ करके आप तभी जो खाना भी खाएं और खाना भी बनाएं। तो इससे क्या, जब आप स्वच्छता का ख्याल रखेंगे वही चीज़ें हमारे जो अंदर भी जाती हैं। जैसे हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी चीज़ें, अच्छा जब हम सोचते हैं ना, तब हमारे साथ सारी चीज़ें अच्छी होने शुरू हो जाती है।
0: जी बिल्कुल। और बात जब हाथों की हो रही है रेनू, तो देखिए नाखून भी हमेशा साफ़ सुथरे और कटे होने चाहिए, क्योंकि नाखूनों की जो गंदगी है वो भी बहुत जल्दी जो है हमारे शरीर में पहुंचती है और काफ़ी जो है हमें बीमार कर सकती है। पेट की जो बीमारियां हैं खासतौर पर इसी तरह से होती हैं कि हमारे जो नाखून हैं उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, और हमारे हाथ कहीं भी लगते हैं, हम बाहर से हाथ तो धो लेते हैं लेकिन नाखूनों के जो अंदर की गंदगी है वो तभी साफ़ होती है अगर आप अपने नाखूनों को साफ़ सुथरा रखें, उन पर ध्यान दें और हमेशा छोटे नाखून रखें, जिससे कि हाथों की जो मैल है वो पेट तक जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो गंदे हाथों से ही होती हैं,
1: गंदे हाथों से और गंदे पानी से। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे हम करेंगे, लेकिन पहले गीत सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल।

0: सुनीता, मुझे लग रहा है कि जो बहनें हैं वो गीत सुनते सुनते कहीं खो गई होंगी और आलस आ ही जाता है, दोपहर का वक्त है ना,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: बस यही कहेंगे कि जाग जाइए, अभी तो कार्यक्रम में बहुत कुछ बाकी है। और हम बात कर रहे थे कि जो गर्मियों का मौसम है उसमें आपने कौन कौन सी जो सावधानियां हैं वो बरतनी है, और पर्सनल हाइजीन का आपने कितना ख्याल रखना है। तो पर्सनल हाइजीन में हमने नहाने की बात की, तो नहाने में बालों को नहीं भूलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। देखिए, अगर बालों की अगर हम बात करें तो धूल पसीना और धूप की वजह से बाल जो है वो जल्दी ही गंदे हो जाते हैं, जिससे बालों में रूसी, खुजली या बाल झड़ने जैसी समस्याएं हो जाती है। और गर्मियों में ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि पसीना आने से एकदम से बालों में चिपचिपापन भी हो जाता है, जिससे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हफ्ते में बहनों आपने 2 से 3 बार बालों को ज़रूर धोना है। बाल धोने के लिए आपने हल्के शैम्पू का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट जो है आप यूज़ ना करें।
0: बिल्कुल, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपने सिर्फ आपने बाल गीले किए, ज़रूरी नहीं है
1: जी
0: कि आप हमेशा शैम्पू का प्रयोग करें, लेकिन जब बाल गीले होते हैं ना तो हल्का हल्का आपको ठंडक का एहसास भी रहता है।
1: जी
0: तो अगर बालों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो बालों को लंबे समय तक, देखिए, गीला तो आपने रखना नहीं है, और अच्छी तरह से आपने धो करके बालों को सुखा देना है। वैसे सुखाने की आजकल तो दिक्कत आती नहीं है कि अगर आप घर से बाहर निकले वैसे ही बाल
1: वैसे ही
0: सूख
1: सूख
0: जाते
1: जाते हैं। जी
0: हैं ना,
1: बिल्कुल
0: और जब भी धूप में निकलें तो सिर को आप ढक के रखें, यानी कि आप दुपट्टा ले लें या फिर स्कार्फ से ढक लें, नहीं तो इससे क्या होता है ना कि जैसे एक तो डस्ट भी बैठ जाती है और
1: जी
0: ऊपर से क्या होता है कि जो कलर भी खराब हो जाता है, इतनी ज़्यादा
1: जी
0: तेज़ धूप होती है ना कि आपके बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। तो आप दुपट्टे से या स्कार्फ से जो बाल हैं उनको ढक ढक करके रख सकती हैं।
1: बिल्कुल। और ये हम सभी को पता है कि स्वच्छ और स्वस्थ बाल जो है हमारी खूबसूरती तो बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हमें ताजगी और आत्मविश्वास भी देते हैं। और बहनों, साफ सफाई, स्वच्छता के साथ साथ गर्मियों में हमारा खान पान भी ऐसा होना चाहिए जो शरीर को हाइड्रेट और ठंडा रखे। इसके लिए अपनी डाइट में पानी से भरपूर ताज़े फल, सब्जियां, छाछ ज़रूर शामिल करें, और बाहर की जो तली भुनी और ज़्यादा

0: मसालेदार चीज़ें हैं वो इस मौसम में आप खाने से बचें।
1: और एक और बात है कि बासी खाने से भी ज़रूर बचें, आप उतना ही बनाएं जितना कि आपके यूज़ होता है, क्योंकि पता होता है कि हमारे कितना लगता है, तो उसी तरीके से ज़्यादा बासी भी नहीं खाना चाहिए, और बार बार गर्म करने से भी क्या होता है कि ख़राबी होता है, तो इसलिए थोड़ा बनाएं, ताज़ा बनाएं और ताज़ा ही खाएं। जितना आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, तो उतना ही आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। और जैसे हमने बात कही कि मसालेदार जो चीज़ें हैं, मन तो बहुत करता है खाने का, लेकिन इनसे थोड़ा सा अगर इस मौसम में थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपकी सेहत बिल्कुल एकदम से अच्छी रहेगी। और देखिए, शरीर में आपने ना पानी की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि इसके लिए दिन भर खूब पानी पीना है। और जैसे हमने पहले भी बात की कि आपने ऐसे जो फल हैं उनका प्रयोग करना है जिनमें पानी भरपूर मात्रा में होता है।
0: जी, आप नींबू पानी, नारियल पानी और बेल का शरबत भी लेते रहें बहनों, इनकी तासीर ठंडी होती है और शरीर को एनर्जेटिक भी बनाए रखते हैं। आजकल की जो तेज़ धूप गर्मी पड़ रही है बहनों, वो इतनी तेज़ है कि कभी भी, कहीं आपने देखा होगा बाहर की जब निकलते हैं तो एकदम से गला सूख जाता है हमारा, और पानी पीने के बाद भी हमें ये लगता है कि प्यास बुझती ही नहीं है। तो ऐसे में आप नारियल पानी, नींबू पानी या बेल के शरबत का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये ठंडे भी होते हैं और शरीर में एनर्जी भी, जैसा कि हमने कहा, बनाए रखते हैं। और इसके साथ साथ दही और छाछ को भी आप अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। ये प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं जो पेट को ठंडा रखते हैं और पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं।
1: और देखिए, गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब होता है, इसलिए खाना हमेशा ताज़ा और हल्का ही लें, जैसे हमने पहले भी बात कही आपसे। और शरीर की स्वच्छता के साथ घर और आसपास की स्वच्छता पर भी ध्यान दें, क्योंकि घरों में हवा का उचित प्रबंध होना चाहिए, और अगर होता है तो बहुत अच्छा रहता है। और घरेलू जो कचरा है उसका निपटारा भी बहुत अच्छे से होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और कहते भी हैं बहनों कि स्वच्छ तन में ही स्वच्छ मन निवास करता है, इसलिए स्वच्छता अपनाएं, क्योंकि पर्सनल हाइजीन सिर्फ साफ दिखने के लिए ही नहीं बल्कि सेहतमंद रहने के लिए भी ज़रूरी है। ये छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं।
1: जी,

0: तो देखिए बहनों को बता देते हैं, अभी जाना कहीं नहीं है क्योंकि अभी तो कार्यक्रम चल रहा है महिला सम्मेलन। और आज अब हम बात करेंगे कि एक वक्त था ना सुनीता, कि जब नज़र कमज़ोर होना यानी कि बढ़ती उम्र की निशानी हुआ करता था, लेकिन
1: जी
0: बदलते दौर और तकनीकी विकास में आजकल हर उम्र और किसी भी उम्र में ना जो नज़र का चश्मा है वो लगना शुरू हो गया है, यानी कि समस्याएं जो नज़र की है वो समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: जी बिल्कुल। और अगर हम ये कहें कि तकनीकी जो विकास है उसका बहुत ज़्यादा हाथ है इसमें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया या फिर ज़्यादा हम कंप्यूटर पर बैठकर जो काम करते हैं उससे भी हमारी जो नज़र है उसमें जो है फ़र्क आ ही जाता है, यानी कि हमारी जो नज़दीक की नज़र है उस पर फ़र्क पड़ जाता है, वो कमज़ोर हो जाती हैं। हालांकि नज़र का चश्मा लगाकर रेणु नज़र की समस्या को बढ़ने से रोका भी जाता है, और कुछ लोग तो चश्मा लगाना पसंद करते हैं और कुछ लोग पसंद
0: नहीं
1: नहीं करते,
0: करते,
1: तो ऐसे में जो आई कांटेक्ट लेंस होते हैं उसका उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल। और जो नहीं लगाना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन भी अच्छी है कि भाई चश्मा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि कई
1: जी
0: बार होता है कि किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि भाई मैं
1: जी
0: कैसा दिखूंगा, कई बार कॉन्शियस हो जाता है ना इंसान।
1: जी
0: तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि भाई आई कॉन्टैक्ट लेंस है उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए लेंस पहनने के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ज़रा सी अनदेखी या फिर जो लापरवाही है वो आँखों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेंस लेते समय उनकी क्वालिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए और हमेशा अच्छी क्वालिटी के जो लेंसेज हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। और अगर आप लेंस लगाकर कंप्यूटर पर ज़्यादा देर पहनो काम करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ल्यूब्रिकेंट संबंधी सलाह ज़रूर ले लें, ताकि आप लेंस लगाने से होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे बच सकें। लेंस लगाने से कई लोगों की आंखों में ना रेणु थोड़ी सी रूखापन आ जाता है, और तो इसलिए जो है अपने डॉक्टर की सलाह जो है वो ज़रूर लें। कोई भी आपको समस्या आती है या कुछ भी, तो डॉक्टर के टच में आप अपने ज़रूर रहें।
0: ये वाली बात आपने बहुत अच्छी कही कि जहाँ से आपने जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो लगवाए हैं उनका नंबर भी आपके पास हमेशा होना चाहिए, और जो भी उन्होंने प्रिकॉशंस लिखी होती हैं उन पर भी आपको अमल ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी समस्या लगता है कि भाई कोई बड़ी समस्या है, तो आपको तुरंत उनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं
1: जी
0: उनसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी कहा कि थोड़ी सी हमारी असावधानी हमें थोड़ा नुकसान कर सकती है, तो जो आंखें हैं और वैसे भी आंखें तो अनमोल होती हैं,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: इन आंखों का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और जो कॉन्टैक्ट लेंस है उनका जो सॉल्यूशन में साफ़ करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, और साफ़ करते समय सावधानी भी ज़रूर बरतें। ज़्यादा दबाव से क्या होता है कि जो लेंसेज हैं वो टूट भी सकते हैं।
1: बिल्कुल। और लेंस लगाने से पहले अपने हाथों को बहनों अच्छी तरह से धो लें और साफ़ तौलिए से पोंछ लें, और इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जो आपका तौलिया हो वो रोएदार ना हो, ताकि किसी भी तरह के रोएं जो है वो आपके लेंस में ना चिपके। और इस बात का भी ध्यान रखें कि लेंस लगाते समय आपके हाथों पर कोई भी क्रीम या कोई भी कॉस्मेटिक का यूज़ आप ना करें, क्योंकि इससे आपके जो लेंस है वो ख़राब हो सकते हैं।
0: और इसके साथ ही आपको एक ख्याल ज़रूर रखना है कि जो लेंस का सॉल्यूशन है उसको आपने

0: नियमित तौर पर बदलते रहना है, जिससे आंखों में किसी भी प्रकार की जो एलर्जी है वो ना हो, आप इन जो समस्या है उससे बच सकें।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ बहनों लेंस पहनकर सोने से भी बचें, नहीं तो आंखों में सूजन या लालिमा आ सकती है। एक रूटीन बना लें कि आपको सोने से पहले अपने लेंस जो है निकालकर सेफली रख लेने हैं, क्योंकि अगर आप इसको पहन के रखती हैं तो सोती हैं, खासकर अगर पहनकर आप, तो सूजन भी आ सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें।
0: और देखिए, लेंस पहनकर आंखों को मलने से भी आपको बचना है, तो जो लेंस है वो आपको जो आंखों में टूट करके भी जा सकता है ना, नुकसान भी
1: जी
0: पहुंचा सकता
1: बिल्कुल
0: है। तो
1: बिल्कुल,
0: बहनों, बात ये नहीं है कि हम आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई आपने अगर लेंस का प्रयोग किया है तो उससे आपको कभी भी कोई भी असावधानी ना हो, आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो बस छोटी सी बातें हैं जिनका आप ख्याल रख सकती हैं, और जो आपकी ये अनमोल आँखें हैं उनका भी आप ख्याल रख सकती हैं इन चीज़ों से। और ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है तो आप ये सोचें कि भाई मैंने तो नहीं जाना है, हॉस्पिटल नहीं
1: जी
0: जाना है,
1: जी
0: मैंने दिखाना नहीं है, तो क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नज़र है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। तो इन ऑप्शंस को आप ले सकते हैं कि भाई चश्मा भी आप लगा सकते हैं या फिर आप लेंसेज भी लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपकी जो नज़र है वो फिर टिक जाती है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर एक बार चली जाए तो फिर वो वापस आना मुश्किल हो जाता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: और है भी ऐसी चीज़ है कि भाई आपको दोबारा फिर मिलती नहीं
1: जी,
0: है
1: आंखें,
0: ना।
1: वैसे पहले भी कहा कि आंखें बहुत अनमोल हैं, तो इनका ख्याल ज़रूर रखें। और साथ ही साथ बहनों, आंखों के साथ साथ अपने मनोरंजन का भी ख्याल रखें। बहनों को
0: बिल्कुल
1: सुनवा देते हैं एक और गीत।
0: जी।

तो बस बहनों, आपने रखना है अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रखें, हम तो यही चाहते हैं। और आपने सुनते रहना आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम, लेकिन महिला सम्मेलन कार्यक्रम का समय हो चला है, अब हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: महिला सम्मेलन, जी हाँ, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। दोपहर के 1 बजने को है। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक

स्वागत आप सभी का एक बार फिर से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ और जनाब हम और आप मिलके तय कर रहे हैं ये सफर। रेखा ठाकुर है आपके साथ।

संगीत के बिना जिंदगी, कभी सोचा है? जी हाँ, बिल्कुल फीकी, बिल्कुल नीरस, और अगर संगीत है तो रंग ही रंग है जिंदगी में। ये कहना गलत ना होगा कि संगीत ही जीवन है, संगीत ही गगन है, संगीत ही हमारे रूह को छुए और संगीत ही खूबसूरत सुर हुए, जो मिला दे मन का मीत, पूरा करे जिंदगी का मीत, ऐसी सुरीली दास्तां है जिसका नाम है संगीत। दोपहर का समय है और गर्मी, जी हाँ गर्मी का तो क्या ही कहना, इस वक्त जो खड़ी दोपहर है, ऐसे में यदि आप कहीं बाहर धूप में हैं तो बस यही कहेंगे कि हो सके तो आप अपना काम कुछ समय के लिए थोड़ा आगे कर लीजिए, क्योंकि इतनी तेज धूप में रहना शायद स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो। भाई काम तो करना ही है, हम जानते हैं, लेकिन यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही तो काम कर पाएंगे ना। तो जनाब काम भी करिए, लेकिन रखिए पहले अपना ख्याल, और यदि फिर भी आपको काम करना ही है तो समय समय पर पानी पीते रहिए, साथ में आप हो सके तो जूस लेते रहिए, और ऐसी कड़ी धूप में ना जनाब चिल्ड वाटर यानी कि बहुत ठंडा बिल्कुल कूल पानी से बचिएगा। यानी कि यदि आपका गला ख़राब होता है ना, तो सोचिए कि जिस काम के लिए आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं और उस काम को ही ना कर पाएँ तो फिर क्या फ़ायदा। नॉर्मल पानी पीजिए और अपने आप को थकने से बचाइए, आप थकेंगे कम, काम ज़्यादा कर पाएंगे, इसीलिए तो थोड़ा रुकिए जनाब, कहाँ चले, थोड़ा आराम कर लीजिए और सुन लीजिए कुछ खूबसूरत से नगमे FM शिमला के साथ। थोड़ा आराम फरमाइए और गीत संगीत का आनंद लीजिए। तो सुनवा रहे हैं आप सभी को कार्यक्रम का पहला गीत, कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती में लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन नगमे। अलका याग्निक और साथियों के आवाज़ों में पेश करने जा रहे हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का आनंद आप ले रहे हैं FM शिमला के संग। जी हाँ, हम बात कर रहे थे संगीत की, संगीत क्या मायने रखता है जीवन में। दोस्तों, संगीत मन का वो दीपक है ना, जो अंधेरे दिनों में भी रोशनी दे जाता है। जब सुर संवरते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। जब तान गूंजती है ना, तो भीतर छिपी ऊर्जा फिर से जाग जाती है। संगीत हमें सिखाता है कि हर धुन में ईश्वर बसते हैं, हर राग में जीवन की एक नई राह छिपी होती है। तो आप भी थोड़ा समय निकालिए और सुकून लाइए अपनी जिंदगी में इस संगीत के माध्यम से। तो आइए, पेश कर रहे हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का अगला गीत। सुखविंदर सिंह की आवाज़ में पेश है कार्यक्रम का ये प्यारा सा नगमा। खूबसूरत फिल्म से ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा आप सभी के रेडियो सेट पर।
1: दिल का भी सच्चा हूँ, but, but I am

0: शान की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आपने सुना, प्यार में कभी कभी। सुन रहे हैं आप म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाश एफएम शिमला के साथ। और म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं म्यूजिक की, यानी कि संगीत की। तो दोस्तों, संगीत वो दरवाज़ा है जिसके पार मन हर बोझ उतार कर हल्का हो जाता है। कभी कभी हम शब्दों में तो नहीं कह पाते हैं, पर एक छोटी सी धुन हमारी पूरी उलझन पढ़ लेती है। बस आप भी कुछ ऐसे ही पल अपने लिए ज़िंदगी में ज़रूर निकालिए जहाँ मन की भाषा संगीत को सुने।
1: तुझे रब ने बनाया है।
0: एक और बेहतरीन नगमा पेश कर रहे हैं आप सभी के लिए अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाज़ों में मेला फिल्म से। गीत के बोल समीर के, संगीत अनु मलिक का।

म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक की, यानी कि संगीत की। तो दोस्तों, हमें जीवन में संगीत की ही तरह बनना चाहिए, कभी ऊंचे तो कभी धीमे, पर हमेशा सुरताल में। लोग क्या कहते हैं, कैसा माहौल है, इन सबके शोर से ऊपर उठकर अपने सुर में जीना ही असली कला है।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

संगीत चाहे कोई भी हो, इसके बिना दिन पूरा नहीं होता है। चाहे वो भजन हो, लोकगीत हो, गजल हो या शास्त्रीय संगीत, जिस धुन में मन को सुकून मिले ना, वही संगीत जीवन का सहारा बन जाता है। तो आइए एक प्यारा सा गीत सुना रहे हैं आप सभी को अलका याग्निक की आवाज में, राज फिल्म का ये नगमा। गीत के बोल समीर के और संगीत यह है नदीम श्रवण ने।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला। एक से बढ़कर एक प्यारे गीत हम आप सभी को सुनवा रहे हैं। प्यार तूने क्या किया, इस फिल्म का गीत पेश कर रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। अचानक दोपहर की गर्मी में साथ दे रहे हैं हम आप सभी का। पहले भी कहा था, अब भी कहेंगे कि ऐसी गर्मी में जनाब जरा अपना ख्याल रखिए, थोड़ा थम जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए और आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

सुनवा रहे हैं आप सभी को एक और प्यारा सा गीत। इस गीत को सुनकर शायद जिस काम में आप बिजी हैं, जो काम आप कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी आसान लगे, क्योंकि ये गीत ऐसा है जिसे सुनकर आप भी इस गीत में रम जाएंगे। नायक फिल्म का गीत पेश कर रहे हैं कविता सुब्रमण्यम और उदित नारायण की आवाज़ों में।

0: नायक फिल्म के इस गीत के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में अभी बस इतना ही। जी हाँ, संगीत के बारे में बात हो रही थी और लगातार बातचीत होती भी रहेगी आज के इस सफर में, जिसे हम और आप मिलके तय कर रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के संग। रेडियो हम सफर लगातार है आपके साथ, रेखा ठाकुर। 2 बजने को है, हाजिर हो रहे हैं आप सभी के लिए लेकर प्रोग्राम सब रंग। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: सुरीला सफर संगीत का, साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो, क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तो लीजिए जनाब, सफर में आगे चलते हुए बढ़ रहे हैं सबरंग कार्यक्रम की ओर और सुनवा रहे हैं आप सभी को जुबीन नौटियाल की आवाज में कार्यक्रम का ये पहला गीत।

सबरंग कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं हमारे संग। अभी आपने सुना मनन भारद्वाज की आवाज में एक प्यारा सा गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत पेश है आप सभी के लिए ऐश्वर्या पंडित की आवाज में।

0: निखिल डिसूजा की आवाज में इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। जी हाँ, सुन रहे थे आप सबरंग कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोपहर के 2:15 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर हिंदी समाचार। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिर

और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson

0: विश्वविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य

0: सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।

उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों समय हो चला है एक बार फिर से आप सभी को हिमाचल की खूबसूरत वादियों में ले जाने का। जी हाँ, लोक संगीत लेकर हाजिर हो चुके हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम शिखरों के स्वर में। कुछ लोकगीत चुनकर लाए हैं आप सभी के लिए, तो आइए कार्यक्रम का आगाज करने हम जा रहे हैं तारावती की आवाज़ में इस लोकगीत के साथ।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: शिखरों के स्वर कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे एफएम शिमला के संग। तारावती को भी आपने सुना। लीजिए अक्षर सिंह परमार की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं,
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: शिखरों के स्वर, जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं हीरा लाल कौशल की आवाज़ में कार्यक्रम का ये लोकगीत।

देवराज शर्मा को अभी आपने सुना लोकगीत में। आइए कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत पेश कर रहे हैं आप सभी के लिए रामदयाल सोनी और ओम प्रकाश की आवाजों में।

इसी के साथ शिखरों के स्वर कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी ये उपलब्ध रहेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। पहली से 15 जून तक लोग स्वगणना के जरिए ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भर सकेंगे। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्यालय निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने बताया कि 16 जून से 15 जुलाई तक मकानों की गणना और सूचीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है।
2: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, प्रदेश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किए गए युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल और पुडुचेरी के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्रों और फैकल्टी समन्वयकों का एक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा है। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और इसके माध्यम से युवाओं को देश के सभी राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
3: मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं वो देश की एकता और अखंडता को उसको मजबूत बनाते हैं। पुडुचेरी से जो छात्र आए हैं एनआईटी के माध्यम से, वो इस कार्यक्रम के दौरान पूरे हिमाचल को जानेंगे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जो देवत्व है उसको अभी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है ये निश्चय ही भारत को मजबूत करने में एक नया मील पत्थर साबित है। विविधता में एकता, ये भारत की खूबसूरती है। उसी के आधार पर भारत हजारों वर्षों से दुनिया में एक अलग तरह से है।
1: सांसद सुरेश कश्यप ने डीएपी और एनपीके खाद पर दी जा रही 50 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी बंद करने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस निर्णय से एक बार फिर साबित हो गया है कि उसे किसानों, बागवानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। सुरेश कश्यप ने इस कदम को किसानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 9 लाख से अधिक किसान परिवार खेती व बागवानी से जुड़े हैं और खाद पर सब्सिडी बंद करने से उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और वित्तीय कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण सरकार प्रदेश को भारी कर्ज में धकेल चुकी है। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान का आज प्रदेश में भी असर देखने को मिला। सोलन जिले की लगभग 1500 दवा दुकानें आज पूरी तरह बंद रहीं। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। सोलन जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सहसचिव विपुल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवा खरीद से दवा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है और लोगों को नकली दवाएं ही मिल रही हैं। इस दौरान एसोसिएशन ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा।
4: हमारे इस बंद में सभी प्रकार की दवाई की दुकानें, सभी प्रकार की होलसेल की एजेंसियां, सभी आज पूर्ण रूप से बंद।

0: हमारी स्ट्राइक 19 तारीख रात 12 बजे से 20 तारीख रात 12 बजे तक जारी रहेगी। ई फार्मेसी जो है वो ऑनलाइन दवाइयों का जो व्यापार है उसके विरोध में हमने काफी टाइम से सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी, मगर वो कोई अभी तक संज्ञान नहीं निकला। और दूसरा हमारा है जो हमारी स्पूरियस मेडिसिन भी ऑनलाइन फार्मेसी से आती है, नकली दवाएं जो ऑनलाइन में मिलती है उसका भी विरोध हम करते हैं।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है बांध पुनर्वास, नीति और प्रौद्योगिकी के जरिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
1: भारत के बांध, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और समग्र जल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दशकों से बांधों ने देश भर में कृषि विकास, औद्योगिक विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे जैसे बड़ी संख्या में बांध पुराने पड़ जाते हैं और जलवायु परिवर्तनशीलता बढ़ती है, उनके पुनर्वास, परिचालन, सुरक्षा और दीर्घकालिक सुदृढ़ता का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार संरचनात्मक पुनर्वास, संस्थागत सुधारों, डिजिटल निगरानी प्रणालियों और जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन के संयोजन के माध्यम से इस मुद्दे पर काम करती है। भारत आज विश्व स्तर पर सबसे बड़े बांध श्रेणियों में से एक का प्रबंधन करता है। ये 6628 निर्दिष्ट बांधों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिनमें से 6545 चालू हैं और 83 बांध निर्माणाधीन हैं। इन बांधों की सकल जल भंडारण क्षमता लगभग 330 अरब क्यूबिक मीटर है। वे राष्ट्रीय खाद्य ऊर्जा और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन बांधों में से लगभग 26% 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इसमें 291 वैसे बांध शामिल हैं जो 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। लगभग 42% बांध 25 से 50 वर्ष पुराने हैं। भारत का सबसे पुराना बांध तमिलनाडु में कलनई लगभग 2000 वर्षों से काम कर रहा है, जो स्थायी इंजीनियरिंग और रखरखाव का मिसाल है। इनमें से लगभग 98.5% यानी 6448 बांध हैं जो राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 49 बांध या 0.7% हैं। निजी संस्थाओं के पास 0.6% या 36 बांध हैं और केंद्र सरकार के पास 0.2% या 12 बांध हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक निर्दिष्ट बांध हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान आता है। पुराने बुनियादी ढांचे, अवसादन, बदलते हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न और बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता को देखते हुए व्यवस्थित पुनर्वास और सुरक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत में 439 जलाशयों के विश्लेषण से पता चलता है कि औसतन 42 वर्ष पुराने जलाशय के साथ सकल भंडारण क्षमता का औसतन 19% नुकसान होता है। भंडारण की औसत वार्षिक हानि 0.74% अनुमानित है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1.81 MCM प्रति जलाशय के बराबर है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जैसी प्रमुख पहल को संरचनात्मक मरम्मत, स्पिलवे और गेटों के आधुनिकीकरण और उन्नत निगरानी प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से मौजूदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने के लिए 3 चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। DRIP विश्व स्तर पर सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रमों में से एक है, जो बांध सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित और जोखिम आधारित दृष्टिकोण की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है। बांध पुनर्वास व सुधार कार्यक्रम चरण एक को विश्व बैंक की मदद से अप्रैल 2012 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में 7 राज्यों झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड के 223 बांधों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम ने इसमें शामिल राज्यों और एजेंसियों में बांध सुरक्षा प्रथाओं और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें 144 बांधों के पुनर्वास कार्यों के साथ 223 बांधों के लिए बाढ़ की समीक्षा की डिजाइन, बांध स्वास्थ्य निरीक्षण और पुनर्वास प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया और 223 बांधों के लिए इसका कार्यान्वयन पूरा किया गया है। ये कार्यक्रम केंद्रित था जिसमें बांध संरचना

0: योजनाओं का पुनर्वास और आधुनिकीकरण, बांध सुरक्षा निरीक्षण और मूल्यांकन, आपातकालीन कार्य योजनाओं का विकास, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग का परिचय शामिल है। बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम चरण 2 और 3 अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ। सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: सामयिक चर्चा आपने सुनी। विषय था बांध पुनर्वास, नीति और प्रौद्योगिकी के जरिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। जी हाँ, चलते चलते आप पहुँचे हैं उस खूबसूरत से पड़ाव पर जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। ओल्ड हिट सॉन्ग्स लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो आइए चलते हैं फिर से उसी सफर पर, आपको सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन नगमे। पुराने गीतों की खुशबू आज भी दिल में उतर जाती है जनाब। कुछ धुनें वक्त के साथ नहीं, यादों के साथ चलती है। आइए सुनते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में खानदान फिल्म का ये नगमा।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म संगीत में आप आनंद ले रहे हैं ओल्ड हिट सॉन्ग्स का। जी हाँ, शालीमार फिल्म का गीत पेश करने जा रहे हैं आप सभी के लिए आशा भोसले की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, सदाबहार गीतों का भी अपना ही जादू होता है। जब भी दिल उदास हो तो मुस्कुरा भी देता है इन गीतों को सुनकर। जी हाँ, कुछ पुराने गाने ऐसे होते हैं जैसे बीता हुआ प्यार फिर से सामने आ गया हो। वो पुराने नगमे आज भी दिल को छू जाते हैं, क्योंकि उनमें एहसास थे, सिर्फ शब्द नहीं।

0: तो जानी दोस्त फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में।
1: लड़ाई बंद करो, घर चलो।
2: घर? अरे किधर है घर?
0: दोस्तों ये वो गीत हैं जिन्हें हम ये कह लें कि आज भी हमारे दिल में बसे हैं। पुराने गीत दिल की उस किताब जैसे होते हैं जिसे जितना पढ़ें उतना ही अच्छा लगता है। वो पुराने नगमे आज भी मुस्कुराने पर हमें मजबूर कर देते हैं जिनके साथ कभी किसी की याद जुड़ी हो। और जब भी रेडियो पर कोई पुराना गीत बजता है ना तो दिल भी पुराने दिनों में घूम ही आता है। फिलहाल इसी गीत के साथ फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 3:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है आप सभी के लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

युवा दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त यज्ञम शर्मा, हाजिर हूँ लेकर आपका कार्यक्रम युववाणी। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो लोग खुलकर करना ही नहीं चाहते, वो बात है दोस्तों हंसने का महत्व। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है खुलकर हंसने से हमारी बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जिससे हमारा उदास मन अच्छे मूड में बदल जाता है। अरे दोस्तों, हर समय इतना सीरियस भी क्या रहना, हमें खुश रहना चाहिए और खुशियां फैलानी चाहिए। लाफ्टर शो देखते देखते कब तक गुजारा करोगे? आगे की बातें जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस कार्यक्रम के साथ। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं पहले गीत के साथ।

दोस्तों, याद कीजिए वो पल जो आप सभी में से काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। अकेले कहीं चलते चलते अचानक से अपने दोस्त या भाई बहन की कोई फ़नी बात याद आ जाना, जिससे आपको हंसी रोक पाना नामुमकिन हो जाए और आपको अकेले से हंसने में एम्बैरेसमेंट होने लगे। कह दो, आपके साथ भी हुआ है। दोस्तों, कहते हैं हंसी वो दवा है जो बिना पैसे के मिलती है, लेकिन बड़े बड़े दुख कम कर देती है। ये सिर्फ खुशी दिखाने का तरीका नहीं है, ये हमारे मन और शरीर दोनों के लिए ज़रूरी है। अच्छे माहौल में मन अच्छा हो जाता है। कई बार एक छोटी सी मुस्कान भी किसी का पूरा दिन बेहतर बना सकती है।

आज लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हंसने के लिए भी रीजंस ढूंढते हैं। फोन पर फनी रील्स देखकर जबरदस्ती हंसना, औरों को जज करके हंसना, लेकिन असल जिंदगी में खुलकर हंसने में शर्म आने लगती है। कई लोग तो इतने सीरियस रहते हैं कि उनकी फोटो देखकर भी लगता है इनका चाइल्डहुड भी ऑफिस मीटिंग में ही गया होगा। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम हर समय सीरियस और टेंशन में रहेंगे तो जीना कब सीखेंगे। लाइफ में इनर हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है, और इनर हैप्पीनेस के लिए म्यूज़िक सुनना भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आइए सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों हम सोचते हैं इतना भी क्या हंसना, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सच में खुश वही इंसान है जो दिल से हंसना जानता हो। जैसे जब हम अपने दोस्त के साथ होते हैं तो हर बात पर हंसी ही आती रहती है। असल दोस्त वही होते हैं जो हमारी टेंशन कम करे, हमें हंसाए और मुश्किल समय में भी स्माइल दे जाए। आपको तो पता ही है, दोस्त के साथ बैठकर बेकार की बातें भी फनी लगती है। इसलिए अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो और आपकी कंपनी इंजॉय करें।

दोस्तों अब बात करते हैं सोशल मीडिया और फेक स्माइल्स के बारे में। आज सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखाई देता है, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत लोग अंदर से परेशान होते हैं। इसलिए सिर्फ फ़ोटो वाली स्माइल नहीं, दिल वाली स्माइल ज़रूरी है। हमें दूसरों को इम्प्रेस करने से ज़्यादा खुद को खुश रखना सीखना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हंसी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए आजकल लाफ्टर योगा भी काफ़ी फेमस हो रहा है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं, एक थेरेपी है। तो चलिए दोस्तों, अब एक गहरी सांस लीजिए, रोके, छोड़े और मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, आपका फनी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में लोगों को आप जैसी कंपनी ही चाहिए होती है। अरे हंसिए हंसिए, हंसना बुरी बात तो नहीं।

दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, खुश रहिए, खुलकर हंसिए और हंसाते रहिए। दोस्तों, समय भी हो रहा है कार्यक्रम की समाप्ति का। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात नई बातों के साथ। तब तक यज्ञम को दीजिए इजाज़त, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए 103.7 MHz के साथ।

तो दोस्तों, इस सुहाने से सफ़र में हम और आप चल रहे हैं साथ साथ, और चलते चलते आप पहुंचे हैं उस पड़ाव पर जिसमें अब आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत। कुछ बेहतरीन नगमे सुनवाएंगे आप सभी को। तो लीजिए, आगाज कर रहे हैं सपना मुखर्जी और उदित नारायण की आवाज़ों में यलगार फिल्म का ये गीत।

0: है मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला के संग। जी हां, साजन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में।

जनाब, कैसेट्स की आवाज़ और दिल के जज्बात, 90s के गाने आज भी लगते हैं खास, क्योंकि वो कुमार सानू की मिठास और अलका जी की प्यारी आवाज़, 90s के गाने नहीं सिर्फ गीत थे, वो थे दिल के एहसास।

गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम में बस इतना ही। जी हाँ, दामिनी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू की और साधना सरगम की आवाज़ों में। चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे जनाब, खुश रहा कीजिए, अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है तो ऐसे में अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला पर। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में सबसे पहले आइए सुनते हैं स्पीति कार्यक्रम।

इलुन्यम पुई के गाबला थेन थेरिन के खास लोन डारिंगे नाहिन तने प्रदेश रू जनगणना न्यूतो उन्नीस शब्दुन के तने पहला चरण जून तारीख चिक ने लोगो सुना ये दोसिया तने ई जुलाई की तारीख चौंगा रूप चले डासिया जून की तारीख चिक ने लो तने चौंगा रूपा तने मीमांग्या तने ऑनलाइन की गुण ने लो तने रंग की जानकारी के बड़े जोना डिकासिया जनगणना ल तने थार खेल चुंगना की फिला थेरिंग जनगणना कार्य शिमला रू तने बैठक चिचिक छुंगवासिया तने वतला आकाशवाणी छे दूरदर्शन छे सीबीसी छे तने पत्र सूचना ब्यूरो के ने लो मिगयों वासिया यम्पो जनगणना की फिला तने मीमांग्या ल तने जागरूक चुना की फिला स्ट्रेटजी छे वासिया जनगणना कार्य के निर्देशक दीप शिखर शर्मा सेना थे जून की तारीख चूरू ने लो थे जुलाई की तारीख चूरू रूपा खम्बा गेवी थे गणना चीज थे सूचीकरण चौसिया थे खोंग सेना प्रदेश की मीमांग तो लेला जनगणना कार्य चौसना थे खोंबा गेले संयोग चोरो जैसे से अपील चौसिया एक भारत श्रेष्ठ भारत की गुण लो हिमाचल प्रदेश से पौंडिचेरी ने जुंग दू थे रिक्शुंग चे लोबजुन की थे आदान प्रदान चुना हिंदूसिया होती फिले तेने शिपचू शेबगे लोपटुक चे फैकल्टी एनआईटी पौंडिचेरी ने लो केंद्र विश्वविद्यालय धर्मशाला रू तेने दांगलेप सोंसिया राज्यपाल कविंदर गुप्ता सेना थिरिंग की खोंग थिरिंग की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हिंदूसिया तेने यम्पोलो खोंग सेना तेने एक भारत शेष भारत की फिला गेलखब की नांग दू तेने चिकडेल चे थुंडेलो आयोवासिया यम्पोला तेने गेलखब की जोन गेला तेने गेलखब के रिक्शुंग की कोलवासियनवासिया ई फार्मेसी की फिला तेने मन चौंग के थेरिंग विरोध चो रूसिया तेने सोलन जिला रू तेने लगभग तोंग चिग्रा आप गे थाला थेरिंग मन की दुकान के बंद होगा आसिया तेने मन चौंग के सने शुंग ला तेने ऑनलाइन मन चौंग के ला तेने रोक लगे जरूर जिससे तेने खोंबगी ई खोंबगी मांग गिनसिया था ई के गबला अने दिकी डोमा चेजलो सोनम तुपगेन के लुन्यम बुशिंगे नाइन

ये था स्पीति कार्यक्रम। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है महास्वी कार्यक्रम।

हंसने मकसद नहीं लौड़ना चाहिए, हंसने मकसद नहीं लौड़ना चाहिए, नहीं तो जिंदगी ऐनी ही काटने। किवे बिना मतलब है हंसया दिखा, किवे बिना मतलब है हंसया दिखा, तुम्हारे साथी जिंदगी भी मुस्कराने, तुम्हारे साथी जिंदगी भी मुस्कराने। तो महाशिव कार्यक्रम शून्य आड़े मेरी तरफा का नमस्कार। जय श्रोताओं, आज की यह खूबसूरत बैठी है, खूबसूरत वक्ता बारे दे जॉई बोली सकी कि आज रोज के सही बढ़िया लोगी ते बरसात होने तो ही खुशी को मारे गलबात होने। ता देखा जी क्या कोई ऐणो आदमी होनो जो ले अपने जीवन दे काम का काम एक ही बेरे बेमुंडा दी दाला या ते वे नाक बोनो या ते वे पेटा दी दा नहीं हुयो। तो आदमी उन्हें कहा मैं ज़्यादा करिया बीमार पड़ी, ज़्यादा करिया जना दूड़ा कहा मल एलर्जी हो बाहरी खाना खाने का ठंड आदि बाहरी रोने आदि कारण ज़्यादा करिए लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंदे। ता स्वास्थ्य ही धना, ता आदमी ये स्वास्थ्य मतलब आ शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का। कोई आदमी वो वातावरण ते हुए स्वास्थ्य ले हर तरह का प्रभावित करा। ज़्यादा करिए लोग अपने शरीर स्वास्थ्य बारे दी गल बात करा तो ही चिंता करा, पर अपने अपने शरीर ले पूरी तरह का स्वस्थ डाणा ले मानसिक तो ही मनोवैज्ञानिक दुई तरह स्वास्थ्य बनाए डाणो जरूरी है। लोग ज़्यादा करिया पैसे कमाने ले बड़ी मेहनत करा तो ही अपने स्वास्थ्य बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। भरी लोग जो नहीं समझते जे बताई सो बाहरी घूमने फिरने ले अपने शरीरों इस्तेमाल सारे काम करने ले स्वस्थ नहीं होने। तो अपनों स्वास्थ्य ठीक डाण ले कुछ तरीके जैसे कि हम योग ध्यान या तबे व्यायाम का हम अपने दड़ी शुरुआत करने चाहिए। सही तरीके का खाना खाने का काफ़ी हद तई ठीक रह सकी, जैसे कि पैकेट आड़े खाद्य पदार्थ तोड़े ने काम करने जरूरत आ तो अपनी प्लेटा दी ज़्यादा फल तो सब्जी लेनी चाहिए। संतुलित खाना लेनो स्वस्थ शरीर पानी कुंजिया। तो हम अपनों वजनों भी ख्याल डालो चाहिए, ज़्यादा वजना का शांत लगा कम वजन होने का हमें पूरे दड़े फुर्ती ले रही। भरी लोग नहीं जानते कि रोज़ नियमित रूप का पानी पीनो चाहिए जो हमारे शरीर ले हाइड्रेट आ। तो शरीर हर तंत्र ले पानी जरूरी आ, पानी ना पीने बहानों के बे नहीं देनो चाहिए। हमें जिद्दी भी डेई पानी ये बोतल साथ ही लेने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य ले अच्छी नींद चाहिए लेने, शीघ्र सुतनो शीघ्र उठने की कोशिश चाहिए करने, नियमित रूप का पूरे शरीर जांच कराने चाहिए। तो अगर हमले अपने स्वास्थ्य दी कोई प्रकार कमी लगा तो शीघ्र अस्पताल ले देनो चाहिए। हम तनाव कम करने की कोशिश चाहिए करने, और तनाव का ही ज़्यादा सुतनों ज़्यादा खानों तो ही कई प्रकार समस्या हुआ जिता का आदमी शारीरिक तो मानसिक स्वास्थ्य का असर पड़ा। तो श्रोताओं जो थोड़ी जी गलबात एवं सुनी पहले एक बढ़िया जो लोकगीत।

कि कम जमीना का है ज़्यादा उत्पादन लेनो। पॉलीहाउस खेती एक बड़ी अस्त्रोत किले आ किले की बाहर चाहे गर्मी हो आ चाहे इन आ पानी हो आ चाहे लागो नो पॉलीहाउस सदी हमें 12 महीने खेती करे सकी। एता का आय रुकती नहीं तो ही पारंपरिक खेती का 4 का 10 गुना ज़्यादा उत्पादन हुआ। इता का उत्पादन भरी मिला जितो मोल ज़्यादा हुआ 100 फसलें उगाई जैन कि शिमला मिर्चुए काकड़ी गैरकिन चेरी टमाटर हुआ स्ट्रॉबेरी विदेशी फूल पत्तेदार सब्जी तो ही विदेशी सब्जी जो बाजारा दे बढ़िया दामा दे बिका। तो इता साथी ड्रिप सिंचाई का पानी काम भी लगा तो मौसम असर भी नहीं होता शुरू तेज दो चाहे कितरो पानी हो चाहे ठंडा का कितनी भी ठंड हो तेता का बचाव हो। तो जो खेती के लिए सुरक्षित रहा तो फसल अगर लाई तो सिर्फ पहले ही वर्षा दे बढ़िया मुनाफा होआ। तजी जो पॉलीहाउस है जो कई प्रकार है जैने कि साधारण पॉलीहाउस जो एक सस्ता हुआ तो तापमान प्राकृतिक हवा का नियंत्रित हुआ जो सामान्य सब्जी ले हुआ तो दूजा वातावरण नियंत्रित करा जो ज़्यादा खर्चीला हुआ तो तापमान आर्द्रता बागुरी सब मशीना का नियंत्रित हुआ जो फूल तो महंगी सब्जी ले बढ़िया हुआ। कम लगती आड़ो पॉलीहाउस इत बांसिया तबे लोहे पाइप हुआ लागे ने जो माठे किसान ले बढ़िया। पॉलीहाउस अदे लाने आड़े लाभदायक जो फसल ऊंची आए आड़ी फसलें हुआ। पॉलीहाउस बनाने दी खर्चा जन कि भारत दे 1 एकड़ पॉलीहाउस लागत आ कम लगते आड़ी पॉलीहाउस 8 का 10 लाख तो सामान्य लगते आड़े पॉलीहाउस 18 का 25 लाख वातावरण नियंत्रण आड़वा 35 का 45 लाख तो राज्य सरकार 40 का 60% तई सब्सिडी भी इताले दिया। तो पॉलीहाउस आदि आय मुनाफा भी भरिया और इत कहनी चीज़ा जरूरी है जाने कि अच्छी दो आड़ी जमीन चाहिए होनी हम आकर ड्रिप सिंचाई भी सुविधा चाहिए होनी नर्सरी तैयार करनी हम जानकारी चाहिए होनी तो रोज़ की देखभाल इतने बड़ी जरूरी है। तो होटलू मंडी या तो सुपर मार्केट साथी मारे बढ़िया जान पहचान बातचीत होने चाहिए कनेक्शन होना चाहिए इतना बेचना ले। तजी पॉलीहाउस ले हमें कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्र दे आवेदन कर सकी इत खेती दी जोखिम ना काम आवा तो पॉलीहाउस इत बढ़िया गुणवत्ता आड़े पौधे बनाया बेचने दे काफ़ी फायदा आ। पॉलीहाउस एक शानदार आय स्रोत आ किले की इता का पूरे वर्षा खेती हुआ 4 का 10 गुना उत्पादन हुआ कीड़े तो मौसम कम खतरो हुआ तो बढ़िया फसलें हमें मिला सरकारी सब्सिडी भी मिला तो ज़्यादा फायदा तो कम नुकसान तई आज के वक्त दी पॉलीहाउस खेती सभी का शीघ्र बढ़ता लगन कृषि व्यवसाय तजी पॉलीहाउस की खेती सिर्फ एक तकनीक नहीं आ बल्कि किसान उज्जवल भविष्य ले नए एक उम्मीद भी आ। अगर किसान सही जानकारी तो मेहनती का काम करा था खेती का तो ही ज़्यादा लाभ ले सका। ता श्रोताओं जो थोड़ी जानकारी अभी सुनी एक बढ़िया जो लोकगीत।

अभी आप महाजवी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है किन्नौरी कार्यक्रम।

फाइलो रंजीत भाई से नमस्कार, राम राम, जुले जो आकाशवाणी शिमला तो जो प्रोग्राम कालपारंग कुल्लू रिले केंद्र नोच रिले हाचो दंगसी इदराव शुम दशमक।

20 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला श्री किनो रंचीज बैसी स्याना गोनु आशीर्वादो मांगशी नीज भगवानु शक्ति आमा बबारंग तेगे पेरानु सेवा लानोज बोरी तेग भक्ति नीज ठची मानीस नियो जुबातंग रंग एके किनोनु रेडियो कॉनेज गहरीशा पेश लानो तो त्रुक्सु किनोरिंग प्रोग्राम दवाई से किनो से की हालिस्तोज राजी खुशी स्तो चाहे द्रुक्सु प्रोग्रामो किनो दोखुन रोंची शारे शारे गीतंगोरंग परदेशु खास खास खबर सार दंगसी बातेशी देवो की भूमि हिमाचल प्रदेश रंग विश्व मा विज्ञान द्यारो बारे बातंग काश्ता बाई से दोख जो अमस्ता रोंची गीतंग हेमा नेगी इसलाइन शीत

ख्यांता आधुनिक विकासू ईद उदाहरण लीदू मदे जंगचू हुन साफलान शांत हुन ख्यांता वादी गो मेहमान नवाजी हुन लानो मियोनू जो दुनियो जो शारी रंग सुरक्षित जागा तो मदे देवभूमियों जो शारे रुवंग सेकिनु जंग बन्नो तांगेस तो जो खुशी देस मदे आई दोखुन जिंदगी इबरंग जंग बन्नो बारंगसु मियो वाली दोक इच्छा ताज मदे दोग भाई सही काचता सांता बातन किशास बात ऐसी शे हुन रोंची चिकितंग चंद्रलाल नेगी स्लाइन शीत।

Baisi sodebo sheng niza mei mea, yani turuk su diaro mea, ju dunyo den vishwa ma vigyan diaro peng mones mede. Ambo liu vishwa metrologi diaro ya mapan vigyan diwasli los mede. Ju diaro kishanu diaro jivano vigyan udyog rang antarashtriya ju vyaparo dam maprang mapan pranaliyo mehto tanges samarpit to mede. विज्ञान रंग प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जो दियारो खास जागा तो मदे ठूलना जो बगैर वैश्विक व्यापारों ख्यांता चिकित्सा क्षेत्रों रंग वैज्ञानिक शोधनु दो हाले शुद्धता हाचो मदे विश्व माप विज्ञान दिवसु मनेमो यूनेस्को इत ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि कथाली तो मदे निजामी 1875 म्या फ्रांसु राजधानी पेरिस तोक 36 देशों नु प्रतिनिधियों नु इत ऐतिहासिक समझौतो देन हस्ताक्षर हाचिस मदे जुपंग मीटर कन्वेंशन या दोक मीटर संधि लोशीद जु संधियु खास मकसद चई दुनियो देन ख्यांता वजन भार रंग लंबाई पंग मापे मोतांगेस इदि रुंस्या रंग सुसंगत वैश्विक प्रणाली पंग तैयार लानो तोस मदे हुजू संधियो दोक नीव वाली खास निकायनु ताशीर हालिंगाना अंतर्राष्ट्रीय मापन ब्यूरो रंग अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान संगठन रिंगो अंतर्राष्ट्रीय माप विज्ञान समिति 1999 में आजू द्यारोपंग दोक मोनेमु शुरू लान लान दो युमसी दोक यूनेस्को ख्यांता नवम्बर निश हजार निजो शुम्या निशनिजो निश दोक महाअधिवेशनों जुपंग आधिकारिक दोक वैश्विक द्यारो दोक जुसु दो ख्यांता फनबो तांगेस जुसु मान्यता पंग रन रन दोम्या निश हजार निजो प म्या यूनेस्को स्तोक जो ओम्स दुनियो देन जु द्यारो पंग मोने शीत बाईसी तारे तोरु हालिंगा निजा मई म्या दोक जु द्यारो पंग मोने ओनियो जु द्यारो मोने मु दो खास मकसद दोक पतेशमा तांगमा किशा नागरिको रंग उद्योगोनु दोक जुगोनु मदे जु सोमजेनो आई गाटो गाटो मा पेमो देन गलती हाचमा वाल मुश्किल बतोरिंगो हदे बेरंग दोक इत देशो लांशी चीजू दोक तोलेमो आई देशानुली वाली धम निज ग्यामिक रियो मदे दोक बाजारो उपभोक्तागो नु तांगेस दोक नापेमो या तोलेमो जू दोक नियमो नु रंग कानूनो नु लागू लालनान मदे वैसे दो किशा बाजारो राशन या दोक पेट्रोल या ठतली दोक कशा ग्यामिक जोकमा देरंग किशानु दोक ख्यांता जू दो मदे विश्वास निजबाई कि किशानु दम वजन स्या पोरे तोरिंगो कानूनी माप विज्ञान दोक मेकमो जू कमंग लांतो बाई कि दुकानदारो रंग कंपनी गोनु या दो ग्राहकोनु कम तोलेले दोक जाली मारंतो मदे दोक ख्यांता हुजू द्यारो पंग मोनेमो हुजू मकसद दुबई कि जू चेकिनु दोक दम किस जू दोक मापे मु तांगेस दम किस जू इत विश्वास दोक चेकिनु नितो मदे बाईसे दोक जुता सांदा किनो स्वातंग बाते शिशे दोक दंसी तुरुक्सु खास खास खबर सार लिखिनो रंचिचन्यो तुरुक्सु खास खास खबर सारो नु प्रदेशो दोक जनगणना निश हजार निजो तिशु दोक ओमसु चरणु इत जून में आज शुरू हा चोरिंगो जू सोंगा जुलाई तक साले तो य इत तारीख में आज सोंगा जून तंग मियोनु स्वगन्नो जरियास दोक ऑनलाइन माध्यम्स अनु जानकारी पंगमु सोके तोरिंगो जुसु दोक सफल कामंगु तांगेस तोरो जनगणना कार्य निदेशालय शिमला इत दुम हाचिस मदे जोर आकाशवाणी दूरदर्शन सीबीसी रंग पत्र सूचना ब्यूरो अधिकारी गोस हिस्सा उनशीद जनगणना पंग ख्या ख्या मीनू जागरूक लानो तांगेस रणनीति लाइशीद जनगणना कार्य निदेशालय निदेशक दीपशिखा शर्मा जी स्टोशीद कि जो सोरुक जून सोंगा जुलाई स्तंग किमोनु गन्नाली सूचीकरणु कामु लांतोरिंगो अनिस तोक प्रदेशो मियोनु नागरिकोनु जनगणना कामोनु सहयोग अपील लानशीद नियो आई खबर तो ई फार्मेसियो जो खिलाफ शैलोनु विक्रेता गोस जो राष्ट्रव्यापी जो बंद लान लान तोरो प्रदेशोली असर टाइम बदा सोलन जिलो ते मास 1500 शेलोनु दुकाने तोरो बंद गेय शेलोनु व्यापारी गो सरकारु दोक स्तोक ऑनलाइन शेलोनु जोक मुदेन रोक लानो मांग लाइशीद सोलन जिलो ख्यांता दोक आनेगोनु दोक एसोसिएशनु महास आनेम सेस

चिवीस आणि विपुल शर्मा जी लोशित बाई की ऑनलाईन शेलोनु जोखमो बुजेस शेलोनु व्यापारो कचंगवाली दोक घाटो हाचेरिंगो शुओ दूरिंगो दंगसीबाई से आई खबर तो राज्यसभा सांसद आणि प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी लोशित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंग स्वीडन जो हालिंगा सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द जो पोलर स्टार तो कानेनु दोक सम्मानित लान लान रिंगो देरंग दोक भारत जो दुनिया देन साख रंग कूटनीति से वाली तकड़ा हाचिस रिंगो आनिस लोशित की जो इत इनाम मानी बाई दंगसी इदराओ निशनिजा करोड़ भारतीयों नु बदे दे जो ख्यांता वैश्विक गौरव प्रतीक तो रिंगो किसानु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सर्वोच्च सम्मान उनसिया जो ओम्स एशियाई नेता हाचिशित रिंगो दोक भाई से ही बचता जुता त्रुकसु खास खास खबर छार तो के नि दोक भाई से ही बचता हुन भीमोज ओम्स दोक आईबरंग किशा गोपना शेते कुमारी सुदर्शनानी गिरंग पार्टी स्लाशी जुखितुंग किनो रंजीज़।

ये था किन्नौरी कार्यक्रम। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अमरीश कुमार की आवाज़ में लीजिए पेश है ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है और डीटीएच सेवा पर भी ये समाचार उपलब्ध रहेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देशभर में छठा स्थान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं और सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार द्वारा अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्य निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक दीप शिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार परिवार को स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा और

0: लोग पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना में सहयोग की अपील की है।
1: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, प्रदेश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में 131 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 42 पंचायतें शिमला जिले की हैं। प्रदेश भर में 176 पंचायत प्रधानों का चुनाव निर्विरोध हुआ है और इनमें से सबसे अधिक 51 पंचायत प्रधान शिमला जिले के हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक इस बार बैलेट बॉक्स पर लगे QR कोड को स्कैन करने के बाद ही पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना की जाएंगी। नाहन में भी आज मतदान अधिकारियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। खंड विकास अधिकारी अंजलि गर्ग ने बताया कि 23 मई को तीसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।
2: हमारे जैसे कि पंचायती राज चुनाव है 26, 28 और 30 को तीन फेजेस में, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं नाहन ब्लॉक में। और अभी हमारी जो ट्रेनिंग्स है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग ऑफिसर्स की चल रही है। हमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइंस आई हैं, तो बैलेट बॉक्सेस पे QR कोड है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स स्कैन करेंगे और फिर उनको जो मूवमेंट जो है ट्रैक होगी। तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आज हमने केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया है और हमारी अगली ट्रेनिंग थर्ड ट्रेनिंग रहेगी 23 तारीख को और 24 को हम सारी पोलिंग पार्टीज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रवाना कर देंगे।
0: शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से 2 दिवसीय शिक्षा व करियर मार्गदर्शन मेला शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों व अभिभावकों को उच्च शिक्षा, करियर विकल्पों और विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस तरह के एजुकेशन एक्सपो बच्चों के लिए मददगार साबित होते हैं और उन्हें बेहतर करियर चुनने का मार्गदर्शन मिलता है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में घोषित हुए 10वीं व जमा 2 कक्षा के परिणामों में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु व आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर से भेंट की। उन्होंने आश्रम में कार्यरत हिमाचल के लोगों से भेंट की और गौ सेवा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री श्री रविशंकर को प्राकृतिक खेती व बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए हिमाचल सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर और FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है बिलासपुरी कार्यक्रम।

बिलासपुरी कार्यक्रम सुनने वाले मेरे सारे साथियों जो तुम्हारी रेडियो दोस्त सुनीता परमार री प्यार भरी नमस्कार। साथियों आहारे स्टूडियो री घड़ियारी सुइया रे अनुसार इस वक्त टाइम हो गया 6:06:36। तो साथियों आज अहें सह गलबात जे अपने श्रोतियों जो सुनानी सह यही कि पहले गल करनी

सारे धर्मां दा सम्मान करना चाहिए और दूजी गल करनी पानी री बचता री, जे पानी आ तां हरा जीवन आ। और लोक गीतां री माला भी घूमती रहनी, सौगी सुनानियां कुछ नवी ताजी खबरां। तां आवा सभी ते पहले सुनी लो ए लोक गीत।

तां जी एह् लोक गीत सुनेआ तुसें बलदेव सिंह खानूरी दी आवाजा च। हून असें गल्ल करनी कि सभी धर्मां दा जैसे सम्मान करना चाहिए। आहारा भारत एक जड़ा देश आ जित्थे जे कई धर्म भाषा और संस्कृतियां रे लोग मिली जुली ने रवें। इत्थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन वगैरह सारे धर्मां रे लोग अपने अपने रीति रिवाजां और परंपरा का पालन करें। आहारे देशा री यही विविधता धर्मां री सभी ते बड़ी शक्ति। इस खातर सारे धर्मां का सम्मान करना हर माणू रा कर्तव्य। हर धर्म अहां जो प्रेम दया सत्य अहिंसा और मानवता रा संदेश देवां। कोई भी धर्म आपूं च लड़ना या नफरत करना नहीं सिखांदा। सारे धर्मां दा मुख्य उद्देश्य माणुए जो अच्छा इंसान बनाना। जे असें अपने धर्मां रे सौगी सौगी दूजे रे धर्मां दा भी आदर करिए तां समाजा च शांति और भाईचारा बने रहना। धर्म रे प्रति सम्मान री भावना अहां जो बचपना ते ही सीखनी चाहिए। अहां जो कदी भी किसी दूजे रे धर्म पूजा या धार्मिक मान्यता रा मजाक नहीं उड़ाना चाहिंदा। सारे त्योहारां जो मिली जुली ने मनाने ते लोकां रे विच प्यार बधां। तियां जे दिवाली ईद गुरु पर्व क्रिसमस सारे लोकां जो एक ही दूजे रे नेड़े लियावां ऐ तां जे अहें किसी दूजे री भावना रा सम्मान करें तां समाजा च एकता मजबूत होई। अजकणे टैमां च कई बार धर्मां दे नाम पर लड़ाई झगड़े देखने जो मिले। इसरा मुख्य कारण अज्ञानता और बुरी सोच ही। आहां जो समझना चाहिए कि धर्म लोकां जो जोड़ने रा काम करां तोड़ने रा नहीं। जे अहें एक ही दूजे रे धर्मां रा सम्मान करगे तां देशा च शांति और सद्भाव बने रहना। स्कूलां और टबरां री भी यह जिम्मेदारी कि बच्चों जो सारे धर्मां रे प्रति सम्मान और समानता री शिक्षा देनी चाहिए। जे बच्चे बचपना ते ही प्रेम और भाईचारे री भावना सीख गए तां ही सै बड़े होए ने अच्छे नागरिक बनने। आहां जो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सभी ते बड़ा धर्म जैसे मानवता रा। इंसानियत ते बदी ने कोई और धर्म नहीं आ। सारे धर्मां रा सम्मान करना एक सभ्य समाजा री पहचान है। इसते आपसी प्रेम एकता और शांति बने रही रोई। अहां सभी जो हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए कि अहें अपने व्यवहारा ते दूजे रे धर्म और भावना रा आदर करिए। हमारा देश सच्चे अर्था च एकता और सद्भाव रा प्रतीक बनी सकां। सारे धर्म शांति रा संदेश देवें चाहे तिना रे तरीके अलग अलग हो। किसी भी धर्म के प्रति कटाक्ष नहीं करना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखनी चाहिए। अहें तिना जो जे पूजें तिस जो ही पूजिए तो एड़ी कोई गल नहीं। जे एड़ा होंदा तां परमात्मा एक ही धर्म बनांदा। अलग अलग धर्म अलग अलग अवतार अलग अलग नौ कै बनाए क्योंकि भगवाना री मौज ही। भगवान भी जाने कि खोपड़ी सभी री अलग अलग ही तां अलग अलग खोपड़ी जो रिजाने खातर सै अलग अलग रूपां चा। कोई काली जो पूजा कोई राम जो पूजा कोई कृष्ण जो मन्ना सब अपने हिसाबा ने देवी देवतियां जो पूजे दे। पर ये सब उसी एक ही भगवान री पूजा होया दी।

एक बहुत बड़ा बट वृक्ष आ। कोई तीसरे पत्तियां जो पूजा, कोई तीसरी डालियां जो पूजा, तो कोई तीसरी जड़ा जो पूजा। पर अहां जो पता होना चाहिए कि पूजा तो तिस बट रे पेड़ा ही हो दी, ना चाहे तुहें कियां भी तिस जो पूजा दे। ता एक परमात्मा ही सारे रूपां च, तिस ते अलग कोई नहीं है। सह जे झगड़ा करें सह अज्ञानी है, सह कोई भगत नहीं है, सह किसी तरह रे भगत बनी भी नहीं सकते। तुहें चाहे कोई भी नाम लेवा, सह एक ही आ। और ये सभी धर्मां चा सभी धर्मां रा सम्मान करना, एक दूजे रे प्रति प्रेम भाईचारा और शांति बनाए रखने री सभी ते सुंदर नींव है। इसा जो सर्वधर्म संभाव भी बोलें, इसरा मतलब आ कि सारे धर्मां रे रस्ते भले ही अलग हों, पर सभी मंजिल मानवता और सत्यारी बुलाई। तां जे अहें दूजे रे विश्वासा रा आदर कराएं तो समाजा च नफरत घट होई। हर माणू जो अपनी आस्था रे अनुसार जीने रा अधिकार आ। इसरा सम्मान करना आहरी नैतिक जिम्मेदारी। सर्वधर्म संभाव रा सिद्धांत आहां जो यही सिखावा कि अहें अपने धर्मां रा पालन जिया तो सह पूरी निष्ठा ने करिए और दूजियां रे विश्वासा जो भी सम्मान महत्व देइए। तो जी ये गल कीती अहें धर्मां रे बारे च। हुण सुन लो एक और लोक गीत।

तां जे लोक गीत सुने तुसें मनसा पंडित होरी दी आवाजा च। हुण असें गल्ल करनी पानी दी, जे इसै बचत कियां करनी चाहिए। तां दिक्खा पानी जिहा तां इह प्रकृति रा अनमोल उपहार आ, पृथ्वी पर जीवना रा आधार जिहा तां सै पानी आ। आदमी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभें जो जिंदा रहने खातर पानी दी जरूरत होई। बिना पानी दे जीवना दी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस खातर अहां जो पानी का महत्व समझना चाहिए और इसरी बचत करनी चाहिए। अजकने टाइम च पानी की समस्या जी तो सै बड़ी तेजी ने बधिया दी। जनसंख्या बधने, पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण जल स्रोत घट होंगे जाए दे। कई गाँव और शहरों च लोगों जो पीने के पानी खातर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पवा। जे अहें हुण भी पानी बचाने खातर कोशिश नहीं करगे तो आने वाले टाइम च ये समस्या होर भी गंभीर हो जानी। पानी की बचत करना आहरा कर्तव्य। पानी का इस्तेमाल सोची समझी ने करना चाहिदा। कई बार अहें देखा है कि कोई भी माणू ब्रश करेदा और नलका खुला छड्डी रहा और पानी जैसे बेकार च बहंदा रहेदा, या हाथ धोएगा तो भी नलके का पानी खुला ही बगी रहा। नहाती बार भी पानी का बहाव ज़्यादा वा, बिना साबणा रे पानी उपर लटते रहना, ये सब पानी की बर्बादी नहीं तो होर क्या। इस खातर जरूरत के हिसाब ने ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बरखा रे पानी जो कट्ठा करने खेतों की सिंचाई कर सकें, खेतों टपक सिंचाई जी तसे आधुनिक तरीक़े का इस्तेमाल करने पानी बचाया जा सका। स्कूलों और समाज लोगों जो पानी बचाने खातर जागरूक करना चाहिए। बच्चों जो बचपना से ही पानी का महत्व सिखाना चाहिए। पानी की हर बूंद कीमती। जे अहें अज पानी बचांगे तो आने वाली पीढ़ियां जो पूरा पानी मिली सका। इस खातर अहां जो संकल्प लेना चाहिए कि अहें पानी की बचत करनी और दूजियां जो भी इस खातर प्रेरित करना। जल आ तां कल आ। पानी सिर्फ माणुआं खातर ही नहीं बल्कि सारे जीव जंतु और पौद्या खातर जरूरी आ। पानी रे बिना जीवन संभव नहीं आ। पानी की बचत रे कई फायदे। इस ते पानी की कमी नहीं हुंदी, जल प्रदूषण घट हुआ, ऊर्जा की बचत हुई क्योंकि पानी जो साफ करने और पंप करने च ऊर्जा लगाई। इसरे अलावा पानी की बचत ते आर्थिक बचत भी हुई। और प्राकृतिक आपदा जे तीन जे सूखे ते बचाओ हुआ, आखिर च पानी की बचत अहां सभी की जिम्मेदारी। अहां जो अपने जीवन च पानी का ठीक उपयोग करना चाहिए और दूजियां जो भी इसरे बारे च जागरूक करना चाहिए। पानी की बचत ते अहें ना सिर्फ अपू खातर बल्कि आने वाली पीढ़ियों खातर भी एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाई सकें। इस खातर पानी जो व्यर्थ ना गवांदे हुए इस जो बचाने खातर हर संभव प्रयास करने चाहिए। ता जी ये गल की अहें पानी की बचत के बारे च। हुण सुन लो कुछ खास खास खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू बोलिया कि प्रदेश सरकार औरतों रे सामाजिक और आर्थिक उत्थान खातर कई योजना चलाया दी। तिने बोलिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था च औरतों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतां जो ध्यान च रखते हुए सरकार औरतों जो आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा च काम करे दी। तिने बोलिया कि जे जनानियां सशक्त बन गईं तां पूरा परिवार आर्थिक

रूपाते सशक्त बनना। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार होरी बोलिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी जो स्वीडन च जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार ने सम्मानित किए जाने ते भारत री विश्व च साख और कूटनीति और मजबूत हो रही। प्रोफेसर सिकंदर कुमार होरी बोलिया कि यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों रे बदते वैश्विक गौरव का प्रतीक आ। तिने बोलिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बनी गए। तिने बोलिया कि पिछले 12 साल प्रधानमंत्री मोदी रे नेतृत्व च भारत की विदेश नीति रक्षात्मक ते आक्रामक और आत्मनिर्भर मोड़ा च बदली गई। प्रदेशा च जनगणना 2027 पहला चरण 1 जून ते शुरू होया था, सहजे 15 जुलाई तक चलना। पहली ते 15 जून तक लोग स्वगणना रे जरिए ऑनलाइन माध्यम ते अपनी जानकारी भर सकें। जनगणना रे सफलता जो लई ने आज जनगणना निदेशालय शिमले च एक बैठक हुई। इस आकाशवाणी दूरदर्शन CBC और पत्र सूचना ब्यूरो रे अफसरें हिस्सा लिया। इस दौरान जनगणना जो लई ने लोगों जो जागरूक करने जो लई ने रणनीति बनाई गई। जनगणना रा काम निदेशालय री निदेशक दीप शिखा शर्मा होरी दस्या कि 16 जून ते 15 जुलाई तक मकाना री गणना और सूचीकरण कित्या जाना। तिने प्रदेशा रे सारे लोकां ते जनगणना कम्मां च सहयोग करने री अपील कीती। ई फार्मेसी रे विरुद्ध च दवाई विक्रेता री राष्ट्रव्यापी बंद रे आह्वान रा अज प्रदेशा च भी असर देखने जो मिलिया। सोलन जिले री लगभग 1,500 दवाइयां री दुकानां अज पूरी तरह बंद रहीआं। दवाई व्यापारियों सरकार ते ऑनलाइन दवाई री खरीदा पर रोक लगाने री मांग कीती। सोलन जिला कैमिस्ट एसोसिएशन रे सह सचिव विपुल शर्मे होरी दस्या कि ऑनलाइन दवाई खरीदने ते दवाई व्यापारियों रा व्यापार खत्म होया दा और लोकां जो नकली दवाइयां ही मिलिया दियां। इस दौरान एसोसिएशन ने उपायुक्त होरी रे माध्यम ते सरकार जो एक ज्ञापन भी दित्या। तो ये थी कुछ खास खास खबरां। हुण सुन लो एक और लोकगीत।

जी विमला शर्मा हो रे इस लोकगीत कन्ने यहाँ रे बिलासपुरी कार्यक्रम रा वक्त जे ऐसे खत्म होया था। अपनी रेडियो दोस्त सुनीता परमार जो देवा इजाजत, नमस्कार।

ये था बिलासपुरी कार्यक्रम। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए सुने कुल्लवी कार्यक्रम।

सभी सुनने वालों पे राम राम। अब सुना तो सकुल भी प्रोग्राम तो सभी मानो राजी खुशी होने से और घर परिवार सुख शांत होने से। तो आज हमारे गल बात करने एक बड़ी शोभली जानकारी भी देनी तू सब है और तथा संगे संगे शोभलग लोकगीत भी सुनने। तो आज हमारे गल करने एक एंडी दैव कुदरतरी शोभली चीज़ा बारे। तो आज रोज़ 20 मई सा और आज हमा पूरी दुनिया न मनाओ माऊ धड़े बारे। तो शोभले मानुओ माऊ हमाले सिर्फ खमीरी ने देंदे। इत्ता साथी साथी खेचा खोला होर फल फूरा और दोनों हमले कुदरत एक शोभलो पर्यावरण दे हो तेते बारे भी माऊ तालमेल बनाया सी। माऊ कुदरत रे सभी ना बड़े कुदरती देन हा। माऊ बारे वैज्ञानिक भी बोला सी कि दुनिया दी एंडी कोई भी फसल नहीं जुन माऊ परागना बिना पैदा हो सी। कई फसल आ जुन माऊ परागना के हमेशा तेता के ही टेकिया सी। जब तेनी माऊ अपने परागण एक ही जगह के दूजी जगह नहीं है माऊ ते बतनी कोई भी फसल नहीं होंदी सी। कोई भी बाकी फसल

तो सुना तो से मैं सब लोकगीत कि खेला दे छे मेरी भावा रूपी ते जेंड तो मैं सब सभी सबले मानू जाना सी कि हमारो कुड़ देश एक जोन कुदरत है बड़े ही शोभली शोभली और बांकी बांकी चीज़ हमले दे दी कुदरत है हमारे कुड़ू नो बड़ी शोभली शोभली जाग सी जोख है देश दुनिया रे मानो इना जागा हृदय एजसी और अखे छा बड़े ही कुदरत नजारे ते तो भरपूर रण कर नंद ले आसी ते आज मारे जोन गल करने एंड ही शोभली और बांकी चोखी जागा सा जलोड़ी जोत ते जलोड़ी जोत कुड़ू देशाना बड़ी शोभली जागा सी जोखे कुदरत रे नजारे ओखे शोभली शोभली जोन धारा हरी भरी धारा सी ओखे बड़ी ही बाना मोर हुए और खर्श हुए के धारा भरी हुई ता इन्ना हृदय देश दुनिया के मानो बेजसी और इतना साथी साथी जोन जलोड़ी जो था सौ जोन समुद्र खाटला के दस हजार लगभग 10,000 फुट के उस जागा गया सा तो जलोड़ी जो था जाया ना मन बड़ो ही शांत हो सी अखेरे ठंडे जो तरी ठंडी बागरो और जहरो पानी तो बड़ो ही मानू रे कुदरत री देन सा तो इतना साथी साथी अखे केड़ो री बूटी भी सा।

और जलोड़ी जो तक चार वाख हेरिया जोन मानु र मन स बड़ ही खुश आसी जे भी जलोड़ी जो तक चार वाखले हम अपने नजर के हेरा तो जिया तैनी भी हम हेरी सका ते जानी कुदरत नजारे नजारे दिशासी ते एत जलोड़ी जोत जोन हमारो भीतरी सराज और बारी सराजा तो तेता ले डेण भी एक बात सी तो जोन जलोड़ी जोता सो जोन बारी सराजा लोगा तीना अपने कुल्लू जिला मुख्यालय ले डेण ले भी बड़ी एक जोन एम जागा सोसा तो इतना साथ साथ ही ओके एक कुदरतरी होर मांग के शुभली देन सा सा श्रेयसर झील जो खजाया मन बड़ा ही शांति मेरा से श्रेयसर झील एक एंडी झीला जो है एक हो चीजें चले जै झीला दे कोई भी बाना मरु पाच पड़ा सी ते चेले कबल छा ते पाचा चौकिया दूरा लनिया और कुदरत चमत्कार सी कि भाई एक हो चीजे चेले अपना काम कर दिला कि कुदरत बांकी बनाने ला शोभली बनाने ला तो और इतना साथ साथ ही जो श्रेय सल जिला ये तो एक अपना धर्म धार्मिक महत्व अखे माता बुढ़ी नागने वास्थान सा जो झील बुढ़ी माता बुढ़ी नागना ले समर्पित सा और झील किनारे झील साथी जो बाडा झील ते एक मंदिर भी बांको शोभला मंदिर बनो सा ते अखे जाया श्रेयसर जाया जलोड़ी जोत जाया लोग आपू बड़ी ही शांति होसी ते अब हम जितने भी मानुस हम एक ध्यान डालो सी कि जितने भी हमारे कुदरत दैरी चीज़ा से हम सवाल डाली ताकि जितने भी देश विदेश और हमारे देश के हिस्सने वाले मानु घूमने हिस्सने वाले मानु आ ताकि सते दी हमारी जो कुदरत चीज़ा तीना गंदी न कर सका हम आपू भी जागरूक होना और लोग भी जागरूक करने ताकि जो हमले कुदरत देवे शुभली चीज़ा दे सी कुदरती हमले जो खूबसूरती दे दी तो सो हम बचाए डानी तो आते हमारी गलबात जलोड़ी जोते बारे तो ऐबे सुना तुसा एक होर शुभ लो गीत

तै आशुणा तुसा शुभल लोकगीत तै ऐबै सभी माणू बै आज रोजारी नवी ताजी खबरा भी सुनाणी। तै आज री खबरा सा देशा प्रदेशा दे जनगणना 2027 योजन पहलो शुरुआत होने तेते शुरुआत होने जून के और जून 15 जुलाई तैनी चालने। तो पहली के 15 जून तैनी लोग जून गणना सब गणना जरिए ऑनलाइन माध्यम के जानकारी अपने दे सका। तो जनगणना जून सफल हो सका तेत तैनी आज जनगणना जून कार्य निदेशालय शिमला ते एक बैठक भी हुई और जीव दे आकाशवाणी दूरदर्शन CBC और हूँ पत्र सूचना ब्यूरो तेते जो अधिकारी लोग थे तीन भाग लियो। तो इतना वक्ता के जनगणना को जो लोग तेते जनगणना बारे जागरूक करने बारे एक रणनीति भी बनाई। जो जनगणना काम सह निदेशालय निदेशक दीपशिखा शर्मा बोलू कि 16 जून के 15 जुलाई तैनी जो घर गणना और जो तेते एक सूची बनानी ते तो कार्य होना और जितने भी प्रदेश से जितने भी नागरिक तीना के एवं काम आदि जनगणना काम आदि सहयोग करने तीन अपील भी की। तो ये तो साथी आज हूँ ई फार्मेसी है तेते विरोध आदि जितने भी दवाई बेचने आए से तीने पूरे देशा दे बंद करने बारे गए थोड़ा की थे आज बंद थोड़ा होता और ये तो पूरे देश दे असर भी दे हिरनल मेड़ो प्रदेश दे सोलन जिले दे लगभग 1500 जो दवाई दुकान से आज पूरी तक पूरे के बंद थे और किले जो दवाई ऑनलाइन ना कला की लोगे लैनी और तेता बंद करने बारे इन्ने मांग से। तो सोलन जिले जो जितने भी केमिस्ट एसोसिएशन ने जो तीन सचिव सह सचिव विपुल शर्मा तीनों भी बोलू कि ऑनलाइन दवाई लैने के जो दवाई बेचने वाले व्यापार या तीनों व्यापार खत्म लग रहा होता और ये तो सची लोग नकली दवाई भी लगती मिलती। तो इत आज वक्त तीन

जिला अधीक्षक माध्यम सरकार ज्ञापन भी दो। ते ऐ थी आज की खबर। ते ऐबे वक्त एक होर शोभलो लोकगीत सुन रहे हो। ते ऐबे सुनाओ तो मैं एक शोभलो लोकगीत होर।

तऽ असुणतोसँ शुभल लोकगीत तऽ आज हमारे गल बात करे हमारे जन शोभली शोभली बांकी जागा और साथी माँ हुए हम के बचाने अपने खेती बाड़ी भी बचने तो ऐबे सुना तुसा एक होर शोभला लोकगीत।

कुल्लवी कार्यक्रम के साथ ही हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब संपन्न होते हैं। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अंग्रेजी समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Centre. He added that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: Mr. Modi also said that both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing have set an important global example. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for

0: heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. The Gujarat government has extended its support to One Nation, One Election Bill. State's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi stated this after a joint parliamentary committee on One Nation, One Election held discussions with a delegation of various political parties in Gandhinagar on the second day of its visit today. India is set to remain the world's fastest growing major economy, as the United Nations projected a growth rate of 6.4% this year, despite global uncertainty caused by the Iran conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said that India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Severe heat wave gripped northern and central India, with temperatures reaching 44 degree mark at several places today. In Rajasthan, an orange alert has been issued for severe heat wave conditions in two districts, while a yellow alert has been issued in 14 districts. An orange alert has also been issued in Punjab and Haryana. The IMD has forecast severe heat wave conditions will continue over northwest and central India during the whole week. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to field against Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। इस समय शाम के 7:10 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान, बागवान, बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान श्रोताओं, कार्यक्रम के इस अंक में मैं हाजिर हूं योगिता शर्मा
3: और मैं हूं अशोक ठाकुर।
2: और किसान श्रोताओं, कार्यक्रम कृषि जगत में आपका स्वागत है।
3: बिल्कुल जी किसान भाई, आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। और योगिता जी, कैसे हालचाल है आपके?
2: देखिए अशोक जी, हालचाल बहुत बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान, बागवान भाई बहन भी स्वस्थ होंगे और अपने जो कृषि और बागवानी के दैनिक कार्य हैं उनमें भी वो व्यस्त जरूर होंगे।
3: बिल्कुल जी योगिता जी, देखो अब मौसम कुछ गर्मी का चल रहा है और काफी ज्यादा तापमान भी अब बढ़ने लगा है, तो निवेदन हमारा किसान भाई से यही रहेगा कि क्योंकि हमारे किसान भाई के पास कामकाज बहुत होता है, तो निवेदन हम किसानों से यही करना चाहेंगे कि सुबह और शाम जो है अपने कामकाज को जो है निपटाते रहें, क्योंकि दिन के समय धूप ज्यादा होती है, धूप में काम ना करें, क्योंकि अगर धूप में हमारे किसान भाई काम करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी जो है विपरीत असर पड़ता रहता है
2: जी।
3: साथ ही साथ इन दिनों हमारे किसान भाइयों के खेतों में खीरा, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, बैंगन, बहुत सारी सब्जियां जो है योगिता जी इन दिनों हमारे किसान भाई लगाते हैं, तो हम किसान भाई को यही बताना चाहेंगे कि इन दिनों जैसे कि तापमान बढ़ गया है तो उनमें जो है पानी के लिए जो है अच्छा प्रबंधन इन दिनों आप करें। सिंचाई शाम के समय करें, सुबह के समय आप सिंचाई ना करें, क्योंकि अगर सुबह के समय आप सिंचाई करते हैं तो वो जो है गर्म तापमान में पानी उड़ जाता है
2: जी।
3: तो इन सब बातों का जो है किसान भी आप ध्यान रखें, अपने कामकाज को जो है अच्छे तरीके से करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें और कामकाज को जो है अच्छे तरीके से चलाते रहें।
2: किसान भाइयों, बात कर लेते हैं आज के मुख्य आकर्षणों के बारे में। सबसे पहले काम की बातों के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी देंगे फूलों एवं कृषि अवशेषों से मूल्य वर्धित सजावटी वस्तुएं बनाना, इस विषय पर। साथ ही पहाड़ी गीतों से आपका मनोरंजन भी करवाया जाएगा और जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी आपको सुनाया जाएगा, जिसका विषय है गाभिन गाय और बछड़ों की देखभाल। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनसे बातचीत करेंगे अशोक कुमार।
3: बिल्कुल जी योगिता जी, कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे काम की बातों से, और काम की बातों के अंतर्गत किसानों को बताएंगे कि फूलों और कृषि अवशेषों से मूल्य वर्धित सजावटी वस्तुएं आप जो है किस तरह से बना सकते हैं। तो किसानों, थोड़ा सा सबसे पहला हम आपको यही बताना चाहेंगे कि मनुष्य का फूलों के प्रति झुकाव प्राकृतिक रहा है और आज के आधुनिक युग में फूल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी बन चुके हैं। फूल चाहे गुलदान में हो या फिर उद्यान में खिले हो, हमेशा ही लोगों को आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर हर व्यक्ति का मन करता है कि वो

0: लंबे समय तक खिले रहे और खराब ना हो, ताकि वे उनकी सुंदरता का लंबे समय तक आनंद उठा सके। और ऐसे फूलों की कम आयु, अधिक दाम और एक ही मौसम में प्राप्त होने की संभावना हमें शुष्क उत्पादन की ओर खींचती है। फूलों, पत्तियों, फर्न, घास, कॉर्न, कली को जो है उगाना, सुखाना और उनको ताजे कटे हुए फूलों के स्थान पर साज सज्जा में उपयोग करना ही जो है शुष्क पुष्प उत्पादन कहलाता है।
1: जी किसान श्रोताओं, भारत जैसे देश के लिए शुष्क पुष्प उत्पादन का विशेष महत्व है। यहाँ के वन और घाटियाँ प्राकृतिक संपदा की धरोहर है। यहाँ विभिन्न प्रकार की घास, पत्तियाँ, फर्न और कोन कष्टी मिलती है, जिनका उपयोग हम शुष्क पुष्प उत्पादों में कर सकते हैं। सूखे पुष्पों का महत्व बढ़ाने के लिए उन्हें प्राकृतिक या कृत्रिम रंगों द्वारा भी पेंट किया जाता है। शुष्क पुष्प उत्पाद का उपयोग न सिर्फ अपने घर की साज सजा के लिए कर सकते हैं, अपितु ये व्यवसाय बेरोजगार युवाओं एवं घर में खाली बैठी महिलाओं के लिए आय सृजन का एक अच्छा स्रोत भी माना गया है।
0: अब बात करेंगे कि शुष्क पुष्पों का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से जो है इससे आय भी अर्जित आप कर सकते हैं। शुष्क पुष्पों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाए जाने के लिए आप कर सकते हैं और ये उत्पाद जो है कुछ इस तरह से रहते हैं। इनमें आप गुलदस्ते बना सकते हैं, साथ ही साथ पॉट पौरी बना सकते हैं, शुष्क पुष्प डंडिया भी आप बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड आप बना सकते हैं, वॉल पिक्चर आप बना सकते हैं और साथ ही साथ वॉल हैंगिंग भी आप बना सकते हैं, पुष्प विन्यास भी आप बना सकते हैं, पुष्प चक्र भी इसमें बनते हैं और कोन से बने उत्पाद भी जो इसमें आते हैं। इसके साथ साथ पोमेडर और शुष्क फूलों से बने गहने, मक्की के छिलकों से बने उत्पाद जो है इसमें मुख्य रूप से आते हैं।
1: और अशोक जी, अगर बात करें गुलदस्ते के बारे में, तो शुष्क पुष्पों का उपयोग गुलदस्ते बनाने में भी किया जाता है। शुष्क पुष्पों में स्टेटिस से बहुत अच्छे गुलदस्ते बनाए जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल ताजे कटे हुए फूलों की तरह लगते हैं। ये प्राकृतिक रूप से ही अलग अलग तरह के रंगों में पाया जाता है। इसी तरह से कुछ घास जैसे लेगुरस, ब्रीजा, ब्रोमस और जिप्सोफिला चिंचिरिची से भी अच्छे गुलदस्ते बनते हैं। इनमें हम प्राकृतिक और विभिन्न प्रकार के रंगों में डुबोकर अच्छे गुलदस्ते बना सकते हैं।
0: बिल्कुल जी, इसके साथ साथ आप पॉट पौरी भी बना सकते हैं और ये एक विशेष प्रकार की साज सज्जा की वस्तु होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खुशबूदार पत्ते, बीज, जड़े, फलियां, टहनियां, मसाले, खुशबूदार तेल का प्रयोग होता है। इन्हें हम सेलोफिन में डालकर साज सज्जा के लिए और अपने सिरहाने में रख सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पॉट पौरी का पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ा है और कुछ महत्वपूर्ण पुष्पीय फूल जिनमें कि गुलाब, लेवेंडर, इसके साथ साथ रोजमेरी, लिली, गेंदा, साल्विया, जिरेनियम, चाइनीज पिंक का उपयोग पॉट पौरी में किया जाता है। इसके साथ साथ कपास के फलों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। पॉट पौरी के लिए प्रयोग की गई चीजें प्रदूषण रहित होती है और जहर रहित भी होती है। गंध से परे और कीट रोधक ये होनी चाहिए।
1: किसान भाइयों, बात करें शुष्क पुष्पों से बनी सजावटी डंडियों यानी के फ्लावर स्टिक के बारे में। शुष्क पुष्पों से विभिन्न प्रकार की सजावट की डंडियां बनती है और इनका मूल्य डंडियों में प्रयोग में की गई विभिन्न सामग्री व बनाने में की गई मेहनत पर निर्भर करता है। इन पुष्प डंडियों को हम किसी भी गुलदान में डालकर घर की साज सजावट कर सकते हैं। जैसे फूलों से हम सुंदर शुष्क पुष्प डंडियां बना सकते हैं। इन डंडियों को बनाने के लिए शुष्क पुष्प के साथ साथ बांस व झाड़ू की डंडियां, टेप, कैंची और तारों की भी आवश्यकता पड़ती है।
0: बिल्कुल जी, सर बात चली है फूलों और कृषि अवशेषों से मूल्यवर्धित सजावटी वस्तुएं बनाने के बारे में। तो इसमें ग्रीटिंग कार्ड की जहां तक बात आती है, तो ग्रीटिंग कार्ड एक ऐसा संदेश पत्र है जो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को किसी भी शुभ अवसर पर देते हैं। ज्यादातर लोग बाजार से कार्ड खरीद कर दूसरों को देते हैं, परंतु शुष्क पुष्पों से भी अच्छे ग्रीटिंग कार्ड आप बना सकते हैं। अगर आप किसी प्रिय को अपने द्वारा बनाए गए कार्ड भेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प रहता है। शुष्क पुष्प से बनाए गए कार्ड में हम स्केल्टनाइज्ड पत्ते, छाल, छोटे प्रेस किए गए फूल व पत्ते, पतली छोटी डंडियों, शाखाओं, घास, फर्न का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं।
1: बात करें अगर वॉल पिक्चर की, तो वॉल पिक्चर बनाने के लिए हम फूल, फर्न, पत्तों, घास व डंडियों का इस्तेमाल करते हैं। इन वॉल पिक्चर को हम फ्रेम कर हमेशा के लिए इनकी सुंदरता बरकरार कर सकते हैं। ये वॉल पिक्चर अगर हम स्वयं तैयार करते हैं तो बाजार से खरीदी गई वॉल पिक्चर से काफी कम कीमत में हम बना सकते हैं।
0: जैक्सन, साथ ही साथ

0: कृष्णलाल सहगल की आवाज में किसान भाइयों, ये तो सुना आपने प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत। और किसान भाइयों, अब समय हो गया है जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का, जिसका विषय है गाभिन गाय और बछड़ों की देखभाल। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनसे बातचीत कर रहे हैं अशोक। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं ये जानकारी पूर्ण बातचीत।
1: जी किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हम समय समय पर कृषि जगत कार्यक्रम के माध्यम से आपको समसामयिक जानकारी लेकर आते हैं, ताकि आपको कार्य करने में जो है आसानी हो और आप जो है नई तकनीकों से अवगत हो सके और अच्छा मुनाफा जो है आप अपने व्यवसाय से कमा सके। आज किसान भाइयों हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर संदीप गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी लेंगे कि गाभिन गाय और बछड़ों की देखभाल जो है हमारा पशुपालक भाई किस तरह से कर सकता है और किन किन खास बातों का जो उसमें उनको ध्यान रखना होता है। तो डॉक्टर साहब, गाभिन गाय और बछड़ों की देखभाल की जब बात आती है, तो सबसे पहला हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गाभिन गाय को जो है महामारी से बचाने के लिए कौन कौन से जो है टीकाकरण किए जा सकते हैं।
2: गाभिन गाय की महामारी से बचने के बारे में टीकाकरण की अगर हम बात करें, तो इसमें खास ख्याल रखना पड़ता है। महामारी से बचने के लिए जो मेन टीकाकरण हमारा किया जाता है वो है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, जो खुर मुंह में छाले पड़ जाते हैं जिस गाय के, उसको FMD हो जाती है, टेम्परेचर हाई रहता है। दूसरी बीमारी है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको गलघोटू कहते हैं। और तीसरी बीमारी है बैक क्वार्टर।
1: जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप ये बताएं कि जो आपने FMD जो बीमारी, जिसको कि खुर मुंह की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पहचान जो है किस तरह से होती है, लक्षण क्या होते हैं और हमारा किसान भी इसको किस तरह से जो है पहचान सकता है।
2: खुर मुंह की बीमारी में सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि इसमें जो है खुर में और मुंह में अल्सरेशन होगी, मतलब छाले पड़ेंगे।
1: जी ठीक
2: है, मुंह से बहुत लार टपकेगी, बुखार रहेगा, 105 से 106 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दूध की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, जैसे 10 लीटर गाय अगर दूध देती है तो 1 से 2 लीटर पे आ जाएगी, और मृत्यु होने का भी बहुत खतरा रहता है। तो इसके लिए टीकाकरण करवाती है, जो साल में 2 बार होता है, मार्च महीने में और सेप्टेम्बर के महीने में। 6 महीने तक की इसकी इम्यूनिटी रहती है, 6 महीने तक टीका नहीं लगवाना पड़ता है। तो किसान भाई जो है मार्च के महीने में लगवा लें और 6 महीने बाद सितंबर में लगाने, किसी कारणवश अगर छूट जाता है तब भी टीकाकरण कभी भी करवा सकते हैं। ख्याल रखने वाला यह है कि 6 महीने की इसकी इम्यूनिटी रहेगी।
1: जी यानी कि वर्ष में जो है 2 बार इसका टीकाकरण किया जाता है।
2: हाँ जी।
1: इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, आपने बात की HS, जिसे कि गलघोंटू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में भी आप किसानों को थोड़ा सा बताएं।
2: गलघोंटू बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जब हम पशुपालन के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा है इसमें मृत्यु दर है। इसके प्राइमरी सिम्टम ये रहते हैं कि इसमें भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, बुखार चढ़ता है, 105 से 106 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जैसा कि नाम बोलते हैं गलघोंटू है कि गला घुटना शुरू हो जाएगा, पशुपालक जो है पाएंगे कि एकदम से गाय की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे बचाव के लिए भी टीकाकरण किया जाता है। इसमें ख्याल रखने की बात यह है कि साल में 1 बार टीकाकरण होता है, जो कि मई जून के महीने में होता है। मतलब अगर FMD का टीका आप मार्च में लगा रहे हैं तो उसके 1 से 2 महीने बाद इसका टीकाकरण होता है, मई जून में इसका टीकाकरण हो जाता है, और ये साल में 1 बार करना होता है, इसकी इम्यूनिटी 1 साल की होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपने बात की BQ के बारे में, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप किसानों को बताएं।
2: BQ से हमारा मतलब है ब्लैक क्वार्टर, ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो गाभिन गाय को हो सकती है और जिससे मृत्यु दर बहुत हाई है। इसमें भी टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, पर इसमें एक खास सिम्टम आता है, उसमें यह है कि जब आप गाय की गर्दन में या हिप्स में हाथ लगाएंगे तो क्रिपटेटिंग साउंड आएगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होती है इस बीमारी की, क्रिपटेटिंग साउंड। इससे बचाव के लिए भी हमारे को ये ख्याल रखना पड़ता है कि इसका टीकाकरण होता है, वो इस साल में 1 बार इसका टीकाकरण होता है। इसके टीकाकरण की ये खासियत है, ये HS के साथ मिक्स होता है, कंबाइंड होता है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक क्वार्टर का इकट्ठा टीकाकरण होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च में FMD का होता है और मई जून में हमारा HSBQ का टीकाकरण होता है। HSBQ की, जैसे HS की इम्यूनिटी 1 साल की है, वैसे BQ की भी इम्यूनिटी 1 साल की रहती है।
1: अब बात करेंगे कि गाभिन गाय की जो है क्या एक खुराक होनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ माँ बन सके।
2: आमतौर पे जब भी हम गाय की खुराक के बारे में बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने पिछली पार्चुरेशन है, पिछले सोए में कितना दूध दिया है या अभी वो कितना दूध दे रही है। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला है, अगर एक गाय 6 लीटर दूध दे रही है तो उसको फीड लगेगी कम से कम 4 किलो, मतलब 2 किलो फीड उसके रखरखाव के लिए लगेगी और हर प्रत्येक 3 किलो पे 1 किलो फीड लगेगी।

0: तो 6 किलो का अगर दूध दे रही है गाय, तो 4 किलो फीड बनी, मतलब 2 किलो फीड सुबह 2 किलो फीड शाम को लगेगी। इसी तरह से फार्मूला बदलता जाता है, अगर 12 किलो दूध दे रही है तो फिर 6 किलो फीड लगेगी, 3 किलो सुबह 3 किलो शाम। जानने वाली बात यह है कि 2 किलो फीड लगेगी रख रखाव के लिए और प्रति 3 किलो मिल्क पे 1 किलो फीड लगेगी। अब साथ में साथ ये ख्याल रखना है कि पेट के कीड़ों की दवाई जो है गाभिन गाय को जरूर खिलाएं, ठीक है जी। वो फेनबेंडाजोल नाम की गोली आती है जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती है, एक गोली आप 1.5 ग्राम की खिलाएंगे और 14 दिन बाद फिर रिपीट करेंगे और 3-3 माह के अंतराल में उसको खिलाते रहेंगे जब तक गाय सूई नहीं, ठीक है। इसके साथ तरल कैल्शियम खिलाएंगे आप, कैल्शियम बहुत तरह का मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में लेना है तो एस्काल गोल्ड कैल्फोसवेट के नाम से आता है, प्रतिदिन पिलाएंगे आप, सूने के टाइम तक पिलाते रहेंगे, सूने से 15 दिन पहले बंद कर देंगे। उसका कारण ये है कि अगर कैल्शियम खिलाते रहे तो दिमाग को यह सिग्नल नहीं जाता कि गाय बच्चा दे दे, तो 15 दिन पहले अगर आप बंद कर देंगे तो दिमाग से गाय को सिग्नल जाएगा कि बच्चा पार्चुरेट कर दे। तो कैल्शियम आपने खिलाते रहना है, 15 दिन पहले बंद करना है और सोने के तुरंत बाद फिर शुरू कर देना है। तीसरा हमारा है खनिज मिश्रण खिलाना बहुत जरूरी है, 25 से 50 ग्राम डेली खनिज मिश्रण खिलाएं। खनिज मिश्रण का मतलब है मिनरल मिक्सचर जो है वो लगातार खिलाना है आपने पूरी प्रेगनेंसी में। मार्केट से ग्रोमिन एसी या मिनफा के नाम से आता है, इस नाम का खरीद लें और 50 ग्राम दिन का खिलाएं सोने तक। किसान भाई चाहें तो अपने आप भी फीड बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा था 2 किलो सुबह 2 किलो शाम फीड खिलाएं 6 किलो वाली गाय के लिए, तो 2 किलो फीड कैसे बनानी है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। 2 किलो की अगर फीड बनानी है तो 750 ग्राम उसमें चोकर होनी चाहिए
1: जी,
0: 750 ग्राम उसमें खल होनी चाहिए, खल कोई भी हो सकती है, मूंगफली की खल हो सकती है, सरसों की हो सकती है, बिनौले की खल हो सकती है, और 750 ग्राम आपका क्या हालत है इसमें दाना आएगा, चाहे वो गेहूं का हो चाहे मक्की का दाना हो। इसमें आपने 2 चम्मच नमक मिलाने और 50 ग्राम गुड़ मिलाना है, तो ये आपकी 2 किलो की फीड होगी। ये 2 किलो की फीड आप सुबह 2 किलो की फीड शाम को खिलाएंगे अगर 6 किलो गाय आपका दूध देती है, तो इस तरह के फार्मूले से आप चलेंगे तो गाय को कोई भी मुसीबत नहीं आएगी
1: जी। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बात की गाय को कैल्शियम देने की, तो थोड़ा सा आप बताएं कि गाय को जो ये कैल्शियम देना है तो ये 2 टाइम देना है कि एक ही टाइम से ये हो जाएगा?
0: कैल्शियम जो गाय को देना है उसमें मात्रा पे डिपेंड करता है, जैसे 100 ml इसकी डोज रेट है, 100 ml डेली देंगे आप
1: जी,
0: प्रेगनेंसी शुरू होने से स्टार्ट कर देंगे और 100 ml डेली देंगे, एक बार दिन में देना है और सूने के 15 दिन पहले बंद करना है, फिर सूने के बाद फिर शुरू कर देना है
1: जी। डॉक्टर संदीप गुप्ता जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गाभिन गाय को आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां जो है मुख्य रूप से लग जाती है?
0: इसमें प्रेगनेंसी में जो आमतौर से बीमारियां गाभिन गाय को लग जाती हैं उनमें ख्याल रखने वाली बीमारी का नाम है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स होता है जिसमें बच्चा दानी, गांव में इसको दंदी भी बोलते हैं, जगहों पे अलग अलग नाम से ले जाते हैं, हम लोग इसको प्रोलैप्स बोलते हैं। इसमें जो है बच्चा दानी गाय की जो है बाहर आ जाती है, तो इसमें प्रोलैप्स ये पेट के कीड़े की दवाई ना खिलाने या कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है। तो इसमें किसान भाई ये ख्याल रखें कि, और अगर घर में इसका इलाज करना है तो इसमें यही ख्याल रखेंगे, बर्फ़ वाले पानी से जो भी बच्चादानी बाहर निकली है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। पर किसान भाई अपने लेवल पे ये ख्याल करें कि जब ये बाहर निकल जाता है तो उसका साफ़ सफाई का ख्याल रखें और बर्फ़ वाले पानी से साफ़ करके अच्छी तरह से अंदर कर सकते हैं तो कर दें
1: जी।
0: दूसरी बीमारी जो है वो इसमें है टॉर्शन। इसमें जो है बच्चादानी पलट जाती है, ये 2 तरह की हो सकती है, प्री सर्वाइकल या पोस्ट सर्वाइकल। प्री सर्वाइकल का मतलब है कि जो सर्विक्स से पहले, पोस्ट सर्वाइकल का मतलब है जो सर्विक्स से बाद। तो भागों में और बांटा है, लेफ्ट या राइट, मतलब या तो उल्टी साइड पलट जाएगी बच्चादानी या सीधी साइड पलट जाएगी बच्चादानी। इसमें भी किसान भाई पशु गाय को पलटा देते हैं और वो बच्चादानी को सीधी पोजीशन में ले आते हैं और बच्चा निकाल देते हैं। तीसरी बीमारी हमारी जो है वो है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर बहुत ही आम बीमारी है, नाम इसका मिल्क फीवर है, पर इसमें टेम्परेचर जो है गिर जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है इसमें। इसमें जो है कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अगर किसान भाई, जैसे मैंने अभी बताया था कैल्शियम खिलाना जरूरी है, अगर कैल्शियम खिलाना बंद कर दें तो कैल्शियम की कमी की वजह से गाय जो है सूने के बाद एकदम से बैठ जाती है और गर्दन पूंछ की तरफ कर लेती है, ठीक है जी। उसमें फिर तुरंत हमारे को कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट, आप औषधालय में जाएं, कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट इमीडिएटली IV चढ़ाना पड़ता है, 300 ml IV 150 ml सेपकट, और ये कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर आप एकदम से बता देंगे तो इसका इलाज हो जाता है। 3 दिन से ज्यादा अगर गाय बैठी रहेगी तो फिर उसको डाउनर काउ सिंड्रोम बोलते हैं, इलाज यही रहेगा सर। अगली बीमारी का नाम है रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब है जेर का नहीं गिरना। जैसे गाय सोती है, हमारी गबन गाय सोती है, तो उसकी जेर का ना गिरना, वैसे आमतौर पर जेर जो है 12 से 24 घंटे के अंदर गिर जाती है, पर अगर 12 से 24 घंटे के अंदर जेर ना गिरे और साथ में इसको दवाइयाँ खिलानी शुरू करें, जैसे पाउडर प्लेंटा है 50 ग्राम BD 3 दिन तक खिलाएं, ओरल जो है यूट्रोफ्रेश 100 ml डेली 5 दिन तक खिलाएं और बोलस इनुलन 2 सुबह 2 शाम 3 दिन तक खिलाएं।
1: के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब बछड़ा पैदा हो जाता है

0: तो इसकी जो है किस तरह से जो है देखभाल करनी चाहिए?
1: बछड़े की देखभाल का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ही बछड़ा पैदा होता है उसकी नेवल कॉर्ड को लाइगेट करना पड़ता है। जैसे ही गाय सूए, बछड़े का नेवल कॉर्ड लाइगेट करें। गाय का ताज़ा सूआ हुआ दूध जो है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो पिलाएं, ठीक है ना। उसमें बिल्कुल कमी ना करें, कोलेस्ट्रम पिलाएं, नेवल कॉर्ड को लाइगेट कर दें। और कम से जब 15 से 17 दिन का बछड़ा हो जाए या बछड़ी हो जाए तो उसके सींग निकाल दें, ठीक है। और साथ में पेट के कीड़े की दवाई दें। इसमें दूध की मात्रा कितनी देनी है ये बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे सपोज करें, इसका एक फार्मूला है, अगर 25 किलो का बछड़ी जन्म लेती है तो या बछड़ा जन्म लेता है, तो उसमें उसके 10% वेट के हिसाब से दूध देना है। जैसे 25 किलो का बछड़ा है तो 2.5 किलो दूध उसको हर रोज़ दिन का देना है। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो बछड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
0: डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने गाभिन गाय और बछड़ों की देखभाल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारे पशुपालक भाइयों को जो है दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गाभिन गाय और बछड़ों की देखभाल, किसान भाइयों अभी आपने इस विषय पर जानकारी पूर्ण बातचीत सुनी। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनसे बातचीत कर रहे थे अशोक। और किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी पूर्ण बातचीत से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे।
3: योगिता जी, अब कार्यक्रम में समय हो चला है किसानियों को और एक लोकगीत सुनाने का, तो आइए सुनते हैं मीनाक्षी तनवर की आवाज में प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान श्रोताओं, मीनाक्षी तनवर की आवाज में ये तो सुना आपने प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।
1: योगिता जी, अब तो घड़ी की सुइयां भी इशारा करी हमें कार्यक्रम समाप्ति की और सभी किसान और बागवान भाई और बहनों से अब अनुमति चाहेंगे।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

0: एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है एफएम शिमला और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट का सिलसिला भी जारी रहता है। फिलहाल हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है और डीटीएच सेवा पर भी ये समाचार उपलब्ध रहेंगे।
2: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
3: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
2: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से होगा शुरू। पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकती है जानकारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान मिलने पर जताई प्रसन्नता। अध्यापकों व कर्मचारियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अभी तक एक भी गारंटी नहीं हुई पूरी। और दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। सोलन सहित अन्य जिलों में दवा दुकानें बंद रहने से मरीज परेशान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्य निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार परिवार को स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा और लोग पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना में सहयोग की अपील की है।
5: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है। और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, प्रदेश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किए गए युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल और पुडुचेरी के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्रों और फैकल्टी समन्वयकों का एक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और इसके माध्यम से युवाओं को देश के सभी राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
1: मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं वो देश की एकता और अखंडता को उसको मजबूत बनाते हैं। पुडुचेरी से जो छात्र आए हैं एनआईटी के माध्यम से, वो इस कार्यक्रम के दौरान पूरे हिमाचल को जानेंगे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जो देवत्व है उसको अभी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है ये निश्चय ही भारत को मजबूत करने में एक नया मील पत्थर साबित है। विविधता में एकता, ये भारत की खूबसूरती है। उसी के आधार पर भारत हजारों वर्षों से दुनिया में एक अलग तरह से है।
0: इस बीच राज्यपाल ने आज कांगड़ा जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूल गुजरेड़ा का दौरा कर बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। कविंद्र गुप्ता ने बच्चों को समर्पण व आत्मविश्वास के साथ शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने बेहतर कक्षाओं, स्वच्छता सुविधाओं, डिजिटल शिक्षा संसाधनों और ग्रामीण विद्यालयों में अनुकूल शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं और सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार द्वारा अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण करवाया जा रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जिला परिषद चुनाव के भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले वर्ष आपदा के दौरान सड़कों पर गिरे मलबे को हटाने में भी नाकाम रही है और ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसें अभी भी बंद हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत व नगर परिषदों के चुनाव परिणामों से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी।
2: ये नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव का संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा कांग्रेस का नाम लेने वाला आदमी नहीं होगा, ये आपको बताऊं इस तरह की स्थिति है। सारे कामकाज, यहाँ के विकास कार्य सारे वो तो बंद पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद और भी चीजें ऐसी है। झूठी गारंटियां देकर के सत्ता में आए, अभी वो गारंटियां धरी की धरी पड़ी। इन सारी बातों का जवाब देने का वक्त आ गया है।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की शिमला इकाई ने आज शिमला में भ्रष्टाचार निवारण को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सीबीआई के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों को सीबीआई की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले से केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के सभी लोग प्रभावित होते हैं। राजेश चहल ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में आम लोगों की भूमिका को अहम बताया और सभी से रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना तुरंत विभाग को देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छोटी रकम के लेन देन पर भी सीबीआई मामला दर्ज करेगी और सीबीआई के पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। राजेश चहल ने लोगों से अपील की कि यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी

0: कर्मचारी दबाव में डालकर रिश्वत की मांग करे तो तुरंत उसकी शिकायत करें। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से दो दिवसीय शिक्षा व करियर मार्गदर्शन मेला शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों व अभिभावकों को उच्च शिक्षा, करियर विकल्पों और विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस तरह के एजुकेशन एक्सपो बच्चों के लिए मददगार साबित होते हैं और उन्हें बेहतर करियर चुनने का मार्गदर्शन मिलता है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में घोषित हुए 10वीं व जमा 2 कक्षा के परिणामों में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान का आज प्रदेश में भी असर देखने को मिला। सोलन जिले की लगभग 1500 दवा दुकानें आज पूरी तरह बंद रही। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। सोलन जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सहसचिव विपुल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवा खरीद से दवा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है और लोगों को नकली दवाएं ही मिल रही हैं।
1: हमारे इस बंद में सभी प्रकार की दवाई की दुकानें, सभी प्रकार की होलसेल की एजेंसियां सभी आज पूर्ण रूप से बंद हैं। हमारी स्ट्राइक 19 तारीख रात 12 बजे से 20 तारीख रात 12 बजे तक जारी रहेगी। ई फार्मेसी जो है वो ऑनलाइन दवाइयों का जो व्यापार है उसके विरोध में हमने काफी टाइम से सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी, मगर वो कोई अभी तक संज्ञान नहीं निकला है। और दूसरा हमारा है जो हमारी स्पूरियस मेडिसिन भी ऑनलाइन फार्मेसी से आती है, नकली दवाएं जो ऑनलाइन में मिलती है उसका भी विरोध हम करते हैं।
0: शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित कर अलग अलग राज्यों से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस मुख्यालय शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने आज शिमला में बताया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब से दो मुख्य चिट्टा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से होगा शुरू। पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकती है जानकारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में 6ठा स्थान मिलने पर जताई प्रसन्नता। अध्यापकों व कर्मचारियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अभी तक एक भी गारंटी नहीं हुई पूरी। और दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। सोलन सहित अन्य जिलों में दवा दुकानें बंद रहने से मरीज परेशान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए सुनें देशगान।

0: ये था देशगान। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बज चुके हैं और ये वक्त है आपके अपने जाने पहचाने प्रोग्राम भूले बिसरे गीत का।

तो चलिए आप और हम चलते हैं एक ऐसे सुहाने सफर पर जिस सफर को हम कहते हैं भूले बिसरे गीत। ये सफर है पुरानी यादों का, ये सफर है पुराने गीतों का, और मैं हूँ आपकी हम सफर भानु प्रिया वर्मा।

एग्जैक्टली जिंदगी इत्तेफाक है, और कब कहाँ किससे कैसे मुलाकात हो जाए कोई नहीं जानता, और कौन से मुलाकात लाइफ टाइम का साथ हो जाए खैर ये भी किसे पता। फिलहाल एफएम शिमला पर आपका और हमारा जो ये साथ है ना, वो है आज रात 11 बजे कर 10 मिनट तक का। टिल देन आप और हम होंगे एक साथ, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए खास तौर पर लेकर के आएंगे, यानी बहुत सारे सॉन्ग्स और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन सकते हैं हमारे साथ। चलिए प्रोग्राम जो है बादस्तूर हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ता रहेगा एफएम शिमला पर, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए।

0: की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: well, कितना खुश नसीब है वो जिसके लिए किसी के ये जज्बात हो, ये मोहब्बत हो, ये ख्यालात हो, जैसे साहिर लुधियानवी ने इस सॉन्ग में जाहिर किए हैं। इज्जत फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन आपने इंजॉय किया एफएम शिमला पर। ये सफ़र है भानुप्रिया वर्मा के साथ आप सभी का, भूले बिसरे गीतों का, जो जारी रहेगा इस एक मैसेज के बाद।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: कुछ सॉन्ग्स दोस्तों ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन सा लगता है। मन करता है बस चुपचाप बहते जाओ इन गीतों की नदी के साथ। यह है FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए यूं ही।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: फिलहाल पुराने फिल्मी गीतों में इतना ही। FM शिमला सुन रहे हैं आप, सुनते रहिए क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा।
3: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
4: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
3: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
4: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर।

0: और अब आप सुन पाएंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर

0: काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने

0: संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है।

0: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defence and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector.
2: दोनों देशों के स्टार्ट

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर सुन रहे हैं आप एक फिल्म से प्रोग्राम, और ईयर 1992 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है हमारी आज की खास फिल्म। फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन, और ये हमारी आज की खास फिल्म। तो जी 9:30 तक ना सिर्फ आप इस मूवी से रिलेटेड सॉन्ग सुनेंगे, बट कुछ खास इन्फॉर्मेशंस भी हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाले हैं। और अब सुनिए इस फिल्म का वो सॉन्ग जिसने एक न्यू वर्ड को इन्वेंट किया, और वो वर्ड क्या था?

आप सुन रहे एक फिल्म से प्रोग्राम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भानु प्रिया वर्मा के साथ। और दोस्तों आपको बताएं कि इस फिल्म में जो 90s के जो जितने भी लोग हैं जिन्हों को मूवीज़ का काफ़ी शौक रहा है, जिन्होंने मूवीज़ देखी हैं, उन सभी को मालूम है कि शाहरुख खान, अमृता सिंह, जूही चावला और नाना पाटेकर ने जो है इस मूवी में आप देख सकते हैं कि रोल प्ले किए हैं अपने। और राजू बन गया जेंटलमैन से कुछ खास इन्फॉर्मेशन आप इस वक्त एफएम शिमला पर सुन रहे हैं मेरे साथ। तो इन्फॉर्मेशन का जो दस्तूर है उसे जारी रखते हैं। कमर्शियली मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी और ये मूवी को जो है इसकी जो स्टोरी है वो इंस्पायर्ड है 1987 की द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस से, श्री 420 से और अनाड़ी फिल्म से। वैसे इस फिल्म का जो म्यूज़िक है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा और ये पॉपुलर म्यूज़िक बनाने का सीधा सा क्रेडिट जाता है जतिन ललित को। इस फिल्म के कुछ खास फेमस सॉन्ग्स में शुमार था ना सिर्फ लवेरिया बल्कि दिल है मेरा दीवाना, जो कि आप ऑलरेडी ये दोनों सॉन्ग सुन चुके हैं, और एक वो सॉन्ग जो कि अब मैं आपको सुनवाने वाली हूँ इस फिल्म का, वो भी सुपर हिट सॉन्ग रहा था। वैसे देखा जाए इस फिल्म के

सारे गाने बड़े बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और ये बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा बिकने वाला 11th म्यूज़िक एल्बम बन गया था ईयर 1993 में। मैक्सिमम सॉन्ग्स जो हैं कुमार सानू ने गाए हैं, अलका याग्निक, सुदेश भोसले, साधना सरगम, जॉली मुखर्जी भी को सिंगर्स हैं इस मूवी में, जितने भी आप म्यूजिकल नंबर्स सुनेंगे।

0: इसी के साथ अभी फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप सुनते रहिए FM शिमला,
1: सूचना मनोरंजन शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एआईआर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

अगर आपका हम सफ़र बेहतर हो, अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली सफ़र ज़िंदगी का हो या किसी और चीज़ का, वो सफ़र ऑटोमेटिकली अच्छा कट ही जाता है। अब जैसे देखिए ना, आपके साथ हमारा सफ़र कितना बढ़िया से कट रहा है, एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी हम सफ़र भानु प्रिया वर्मा, एंड आई होप कि इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हमें सुन रहे हैं तो आपका दिल कुछ यूं गुनगुना रहा है।

वैसे दोस्तों देखिए ना, हर सॉन्ग की वाइब्स बोलती है कुछ अलग ही, है ना। मूड कैसा भी क्यों ना हो, अगर इन सॉन्ग्स के बीट्स के साथ आपका बॉडी मूव जरा भी करने लगे तो यकीन मानिए कि उस सॉन्ग की वाइब आपके वाली वाइब से डेफिनेटली मैच करती है। तो ऐसी ही मैचिंग वाइब्स लेकर आते हैं अक्सर आपके लिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है एफएम शिमला और एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं एक के बाद एक बहुत ही एंटरटेनिंग म्यूजिकल नंबर्स।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात के 10 बज चुके हैं, तो एफएम शिमला पर रात 10 बजते ही आप और हम होते हैं एक ऐसे सुहाने सफ़र पर जहां पर होते हैं बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे ख्यालात और होती है मोहब्बत बेहिसाब। ये सफ़र है कुछ ख़ास शानदार गज़लों का और आपके साथ मैं आपकी हम सफर भानुप्रिया वर्मा।

क्या गज़ल, क्या नज़्म और क्या शायरी, मेरे हर अल्फाज का मतलब सिर्फ तुम हो। आप सुन रहे हैं FM शिमला पर गज़लों से सजा प्रोग्राम, सुनते रहिए।

आज गज़लों का ये सफ़र बस यहीं तक। एक बार फिर आपको ले चलेंगे गज़लों की खूबसूरत दुनिया में कल रात 10 बजे से। फिलहाल सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और मूड चेंज करते हैं ओल्ड हिट्स के साथ।

इसी के साथ फिलहाल ओल्ड हिट्स के इस सफर को यहीं पर विराम देते हैं। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

0: संसार की हर शय का इतना सा फसाना है कि एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। और अब समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने